0: تألف في ختم القرآن. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं, इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
5: When we enter the bathroom, we say... بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:00.
10: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
11: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
12: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आजाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
1: You're listening to Inspire FM, your number one radio station. Inspire FM.
2: I have whispered.

0: الحمد لله.
1: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा, रहे आपके साथ यहां और वहां, शेर रेडियो इंस्पायर एफएम है।
2: I have whispered to you as I

0: فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه، فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجة، وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
1: حديث 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And he will mention his wrongdoing and will feel ashamed and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge. And he will feel ashamed and will say, go to the friend of the merciful. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Muhammad. May the blessings and peace of Allah be upon him, a servant whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future. So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, raise your head, ask and it will be granted, speak and it will be heard. Intercede and your intercession will be accepted. So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return to him. And when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, there remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.
2: تازہ ترین خبروں اور کمیونٹی اپڈیٹس کے لیے انسپائر ایف ایم کے فیس بک پیج پہ جوائن کیجیے facebook.com/inspireFM Luton.
3: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. from the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza. Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
12: Assalamu alaikum and a very, very warm welcome to all the listeners. I am Afshar Irfan and this is Hajra Khan. And we are here on our show, Family Matters on Inspire FM. Assalamu alaikum.
13: Wa alaikum assalam. Afsha, hope you are doing good. Welcome, khush amadeed, ji ayanu, bhali kari aaye, bakhair raagle, ahlan wa sahlan. You can definitely call us or send a WhatsApp message on our hotline, that is 07779-481-822 or our direct line, that is 01582-481-822. Follow our Insta handle, which is Inspire FM Luton, or log on to our website, inspirefm.org, where you can listen and enjoy much more.
12: Acha, as you all know, that hamara jo topic chal raha hai isme, ye hai family matters, jisme hum ke family ke mukhtalif mamlaat ko, mukhtalif cheezon ko, ya jo hamari ایک فیملی کی ضروریات ہوتی ہیں ہم ان کو لے کر ڈسکشن کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا فیملی میٹرز کا تھا وہ کمیونیکیشن پہ تھا, اس پہ بیس کرتا تھا کہ خاندان کے درمیان ایک فیملی کے درمیان کمیونیکیشن کتنا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک بات چیت کے ساتھ آپ کام نہیں کریں گے یا آپ کی کمیونیکیشن بیٹر نہیں ہوگی تب تک آپ کی فیملی کا بانڈ نہیں بنتا.
13: اور ایسا کیوں تھا کہ ہم نے فیملی میٹرز شو شروع کرتے کے ساتھ ہی ہم نے وائی ڈیڈ وی چوز کمیونیکیشن ایز آر فرسٹ موسٹ ٹاپک, بیکاز اٹ از دا بیسز آف ایوری ریلیشن شپ کمیونیکیشن. جب تک آپ کا کمیونیکیشن کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو موو فارورڈ, چاہے وہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہو, چاہے وہ آپ کی ڈسٹنٹ فیملی ہو, چاہے وہ آپ کے ورک کولیگز ہوں, چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو فارورڈ ود آؤٹ گڈ کمیونیکیشن.
12: بالکل بالکل, ایک فیملی بنتی ہی تب ہے جب اس کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا, کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ, صرف کمیونیکیشن تو ایک پارٹ آ جاتا ہے, اس کے ساتھ دوسرا پارٹ ہوتا ہے ریسپانسبلٹیز کا. ٹھیک ہے, تو جس طرح کمیونیکیشن ایک فیملی کی بنیاد ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایکول ریسپانسبلٹیز بھی اس میں میٹر کرتی ہے؟
13: اچھا, اس میں اب کچھ ایسی ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں افشاں جو ہمیں ساتھ ساتھ کلیئر کرنی بھی ضروری ہیں. سب سے پہلے تو ہم ریسپانسبلٹیز کو لے لیتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی, جیسے ہم ورڈ سنتے ہیں ریسپانسبلٹیز تو لگتا ہے کہ بس واشنگ اینڈ کلیننگ اینڈ کوکنگ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف چلڈرن, ایسا ہی مائنڈ میں آتا ہے کہ نہیں؟
12: بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ہم تو سارا وقت یہی کرتے رہتے ہیں.
13: لیکن اگر آپ اس کا ایک وائڈر اسپیکٹ دیکھیں تو ایک فیملی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں جب ہم رولس اینڈ ریسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو ریسپانسبلٹیز ایک بہت براڈ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا فائنینشیل ریسپانسبلٹیز بھی ہیں, اس کے بعد آپ ہاؤ ڈو یو ریز یور چلڈرن, ٹھیک ہے, ریزنگ ریسپانسبل چلڈرن, اس کے بعد آپ اپنے جتنے بھی گھر میں ممبرز رہ رہے ہیں ان کو آپ ان کو مینٹل لوڈ نہ دیں, ٹھیک ہے, ان کا مینٹل لوڈ شیڈ کرنے میں, ان کو سپورٹ کرنے میں, ان کی ہیلپ کریں, تو دیز آر آل ریسپانسبلٹیز. اگر صرف کھانا پکانا اور صفائی کرنا ہی ریسپانسبلٹی میں آتا تو وہ کام تو ہم کسی کو ڈیلیگیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, isn't it?
12: ہاں بالکل, وہ تو ہم, آپ یہ کہہ لیں نا, ہم کسی کو پے کر کے بھی کروا سکتے ہیں, ہم ہاؤس ہیلپ بھی رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ صرف اس میں نہیں آتی ریسپانسبلٹیز, اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو. تو ہمارے گھر میں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے, اچھا کھانا میں نے بنایا, برتن کون دھوئے گا.
13: ایسے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے سامنے جو آتے ہیں, وچ which actually start a debate, who is going to put the bins out, who is going to do the dishes, who is going to go do the cleaning, or if you have eaten, and who is going to wind up after the dinner and things like that.
12: Achha, aap kya kya khayal hai? Agar hum ek family ki responsibilities ki baat karte hain, to ek normal sa aspect hai zindagi ka ya ek family ka, husbands zyada hote hain, mard, male members jo hote hain family ke, wo ghar se bahar kaam karte hain. और एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि औरतें काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, बच्चे पालती हैं. मियां बाहर से थका हुआ आता है तो आपका सबसे पहले होता है कि यार इसको ग्लास पानी पिला दो. ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना.
14: एग्जैक्टली
12: है ना. तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये ऐसे ही होता है या इसमें भी इक्वलिटी आ जाती है, इसमें भी कुछ ना कुछ शेयर करना आ जाता है?
13: अच्छा, जैसे आपने एक वर्ड पहले भी बोला इक्वलिटी, ठीक है, या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, उसमें उसमें हम एक बात क्लियर करते चलें कि इफ यू हैव 10 डिशेस टू डू, तो 5 कर लेना और 5 अपने पार्टनर के लिए छोड़ देना, इट्स नॉट इक्वालिटी. इक्वालिटी इज कि जब आप ए टू जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली शेयर करें. इफ फॉर एग्जाम्पल समवन इज डूइंग अ 12 आवर शिफ्ट आउटसाइड द हाउस, तो जो घर पे है पार्टनर, वेदर इट इज वाइफ और हस्बैंड, तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीनवाइल देख लें. और अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और देयर पार्टनर इज डूइंग फुल टाइम जॉब, तो वो घर और बिकॉज दे कैन द पार्ट टाइम वन कैन स्पेंड मोर टाइम एट होम, तो वो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा घर के कामों में स्पेंड कर दें, कंट्रीब्यूट कर दें अपनी एफर्ट्स, तो ताकि 12 आवर शिफ्ट करने वाले का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए.
12: हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ज्यादातर औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो काम भी करके आए और फिर आके घर में आके खाने भी पकाए, बर्तन भी. तो ये एक मैंने कहा ना, एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि जी अगर ये जॉब कर रही है तो घर भी संभाल सकती है.
13: ओके, सो यू नो व्हाट, ये जो हमारा एक साउथ एशियन कल्चर है वो क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, मेल मेंबर्स आर द हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर्स आर द ब्रेड विनर्स, मेल मेंबर्स आर द डिसीजन मेकर्स, तो उसमें होता यह है कि बिकॉज दे आर डूइंग द मेजर चंक, दे आर डूइंग द अर्निंग एंड दे आर डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दे आर डूइंग द कॉग्निटिव जॉब जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है आपका, तो एवरी अदर थिंग मे बी लाइक 80-90% of the tasks that don't involve brain as such, तो वो होते हैं औरतों के करने की. So this is generally what is happening in our Asian patriarchal society.
12: इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि मर्द अगर दिमागी काम करते हैं तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और औरतें अगर घर का काम करती हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती.
13: This is what is perceived of a woman's role.
12: Exactly.
13: आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करते हैं या 30 साल पहले की बात करते हैं तो ऐसा ही सोचा जाता था और ऐसा ही हो रहा था. But the times have evolved. Okay. So have the roles. The roles of roles and responsibilities of family members, they have also evolved.
12: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम. लेकिन देखें, हाँ अगर आप उस तरह से देखें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के सारे कामों में अपनी अजवाज का हाथ बटाते थे, ठीक है. तो ये चीज जो है कि नहीं, ये मर्द सिर्फ कमाने के लिए है और औरत सिर्फ बच्चे पालने घर चलाने के लिए है, ये उस वक्त भी नहीं था, लेकिन ये एक हमारा कल्चरल चीज बन गया, ठीक है.
13: तो आपने बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया कि हम इसको अभी we are on the right path to discuss this, के आपकी जो cultural aspects हैं जितने भी, वो आपके religion से कितने associate करते हैं या आप उनको कितना religiously, आप cultural चीजों को कितना religion के साथ relate कर पाते हैं या आपके religious और cultural चीजें बिल्कुल different हैं.
12: बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आजकल तो जमाना वो आ गया है जहाँ पे अगर आप हर चीज में बात करते हैं ना कि ये भी हमारे इक्वल राइट्स हैं, तो ये भी हमारे इक्वल राइट्स हैं. अब फैमिलीज इक्वली की उसकी बुनियाद पे चलती हैं, तो उस सूरत में तो फिर आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली शेयर करनी चाहिए, ठीक है. अब जरूरी नहीं कि मेरा काम है बस बच्चे पालना, घर संभालना, ठीक है, आप एज अ वर्किंग वुमन भी हैं. आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आपकी जॉब भी है, इसके साथ साथ आप साइड बिजनेस भी करती हैं, आप एक तरह से वॉलंटियर्स भी करती हैं, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेके चल रही हैं, ठीक है, एक टोटली डिफरेंट उस पे, और हर चीज आपकी दूसरे से मुख्तलिफ है,
13: बिल्कुल
12: ठीक है ना। तो क्या आप ये समझती हैं कि इसमें इसमें आपके हस्बैंड का आपका सपोर्ट है कि आप इतना कुछ मैनेज कर रही हैं जबकि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है?
13: अगर अदरवाइज होता कि अगर मुझे हस्बैंड की सपोर्ट या हस्बैंड ने मेरे साथ इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर ना की भी होती तो इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड पुट माई सेल्फ इन ऑल दीज रोल्स, जहां पर मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, जहां पर मैं वॉलंटियर वर्क भी दो तीन जगह पे कर रही हूँ, जहां पर मैं वी आर ऑल्सो रनिंग आर सोल सिस्टर्स ग्रुप जिसके बारे में हम पहले एपिसोड में बात कर चुके थे। तो दैट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, अफशा आपको पता है कि उसमें भी हमारी कितनी प्लानिंग और कितनी उसमें भी हम कितने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन इज आवर
12: मेन टूल
13: जिससे हम
12: बिल्कुल देखिए
13: जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं।
12: एग्जैक्टली, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या आप वर्कलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, अनडिस्क्राइब्ड होती हैं, ठीक है। अब अक्सर मैंने बहुत खूबसूरत फैमिलीज भी देखी हैं जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों ऑफिस से थके हुए वापस आते हैं, एक डिशेस संभालने लगता है, एक खाना बनाने लगता है, कभी हस्बैंड खाना बना रहा होता है, कभी वाइफ बना रही होती है, कभी एक बंदा समेट रहा होता है, कभी दूसरा समेट रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं जहां पर आप कह सकती हैं कि इक्वली शेयर्ड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन फिर कुछ टोटली ऑपोजिट भी हैं। मेरी मेरे सामने एक है, एक ऐसी भी मतलब एक फैमिली आई कि आई वॉज शॉक्ड टू सी कि हस्बैंड केम होम, वो आया और सोफे पे बैठ गया और वाइफ ने आके उसके जूते भी उतारे और उसको खाना भी प्लेट में डाल के उसके सामने टेबल लगा के दिया। सो आई वाज शॉक्ड, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा यार तुम बिजनेस करती हो, शी रन्स अ केक बिजनेस, सो यस इट वाज अ हार्ड थिंग, इट्स नीड्स डेडिकेशन एंड टाइम एंड एफर्ट, और फिर बच्चे भी संभालना, एंड दैट गर्ल इज सो अमेजिंग, क्योंकि आप यकीन करो उसने अपना घर यूट्यूब से वीडियो देख के खुद बनाया है, किचन उसने खुद लगाया, टाइलिंग उसने खुद की, अपनी बहुत कुछ उसने खुद यूट्यूब से देख के किया,
13: दैट इज रियली कमेंडेबल।
12: हाँ, लेकिन मुझे उनको थोड़ा सा वो था कि मैं उसको उनके हस्बैंड को मैंने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इफ शी इज डूइंग सो मच इस घर के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए, तो डू यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर द
13: responsibility.
12: तो ऐसे भी होते हैं, मतलब बास फैमिलीज में ये, मतलब ये एक रोल होता है कि बिकॉज ही इज अर्निंग आउटसाइड ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग इनसाइड।
13: This is a very wrong concept. Even के patriarchal society में भी if जैसे हमने कहा कि एशिया की हमारी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जहां पर मेल इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर, तो उसमें भी आप इफ यू आर लर्नड इनफ, इफ यू आर एजुकेटेड इनफ, तो फिर आपको यू मस्ट नो कि आपकी भी कोई घर के अराउंड जिम्मेदारी आती है। और जैसे मैंने कहा कि फैमिलीज इवॉल्व हो रही हैं, कल्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो आई कैन सी मोर हस्बैंड्स, मोर मैन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड चोर्स, एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन। ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि जी ही इज हेल्पिंग विद हिज वाइफ और इट्स अ शेम ऑन हिम,
12: हल्ले लग गया।
13: एग्जैक्टली, इट शुड बी रिलेटेबल, जहां पर उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये तो ही इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ एंड ही शुडंट बी डूइंग इट। तो आप तो वो टिपिकल वर्ड्स निकाल के ला रही हैं कि जो लोगों ने अपने घर में सुने होंगे डेफिनेटली।
12: देखो
13: मतलब
12: बहुत सारे, मैं एक्चुअली चूंकि उर्दू बैकग्राउंड है और उर्दू बोलते भी हैं, समझते भी हैं, और ये सारे वो अल्फाज हैं जो अक्सर हमारे माशरे में दोहराए जाते हैं, जहां पर किसी भी मेल मेंबर ने स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी में कपड़े बाहर तार पे डाल दिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन में डाल दिए, डिशेस उठा के डिश वॉशर में लगा दिए, या कोई برتن دھو دیا, سب سے پہلا جملہ جو اکثر بولا جاتا ہے, یہ تو زن مرید ہے, یہ تو بیوی کے پاؤں تھلے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ شیئرنگ دا ریسپانسبلٹیز آف دا ہاؤس ڈزنٹ میک یو دیٹ.
13: Exactly, بالکل. اور آپ, آئی واز اسٹل گروئنگ اپ, جو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا میرے بالکل سامنے آیا اور وہ میرے ذہن سے کبھی جاتا ہی نہیں ہے. وی ہیو اے ویری گڈ فیملی جو کہ ہماری فیملی فرینڈز ہیں, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ فیو منتھس اولڈ تھا, تو ہی واز ٹیکنگ کیئر آف ہم, اٹھا کے اور اس کو جیسے بچوں کو آپ جھولا دیتے ہیں تاکہ وہ سو جائے یا کام ہو جائے. تو آن دیٹ اسپاٹ ایک میرے بہت ہی قریبی تھے, بزرگ تھے جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس کو, ان کو بہت ایک نا تصدیق سے دیکھا کہ لک ہی از ٹیکنگ کیئر آف ہز چلڈرن, وائی از ہی پکنگ اپ ہز چائلڈ اینڈ یو نو ٹیکنگ کیئر آف
12: راکنگ اور اس کو سلا رہا ہے.
13: تو اٹ واز سچ اے شاک ایٹ دیٹ ٹائم, اور ابھی بھی جب میں اس انسیڈنٹ کو, اس بات کو یاد کرتی ہوں تو مجھے, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سنس وی آر کمنگ فرام سچ سچ اے کلچر بیسیکلی, اور بیکاز آئی بلانگ ٹو اے پٹھان فیملی, تو اس میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ دیز رولز آر اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو وائف وومن. تو میل ممبرز آف دا ہاؤس ہولڈ یا اسپیسیفکلی ہسبینڈز, دے آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دا چلڈرن ایز سچ, کہ ڈائریکٹلی ٹیکنگ کیئر آف دا چلڈرن, کہ وہ اٹھا کے سلا رہے ہیں یا ان کو بوٹل سے فیڈ کرا رہے ہیں یا مے بی ان کا ڈائپر جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس ایک چھوٹا سا کام بھی کر دیتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, تو سوچیں اس کو کتنا بڑا ریلیف ہے.
12: بالکل, ایکچولی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ ایشین کلچر کی بات کریں, آپ یورپ کے کلچر کی بات کریں, آپ کسی بھی اس کی بات کریں, ہر ریسپانسبلٹی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں مطلب اگر ایشین میں یہ ہوتا ہے تو میں نے یورپ کے کلچر میں بھی کچھ اس قسم کی کہانیاں دیکھی ہیں, یورپین فیملیز میں بھی دیکھی ہیں کچھ ایسی کہ وہ ہسبینڈ از جسٹ اے ہسبینڈ, سو ہی ڈزنٹ نو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں. بچے باپ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو شوہر بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر باپ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ماں بننا, بیوی بننا, ٹھیک ہے, اس پہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو گھر کی ایک ایک چیز کو یاد رکھنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات تو آپ کو باہر کی چیزوں کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. اور ہمارا کلچر اس میں ہے جس میں ہمیں پورے خاندان کو یاد رکھنا پڑتا ہے.
13: بالکل ایسے ہی ہے.
12: ٹھیک ہے,
13: کیونکہ آپ جب آپ دیکھیں کہ اف یو ہیو اے چائلڈ, ہم ایک ہی بچے کی بات کرتے ہیں, جب ہمیں ایک بچے کی ذمہ داری لینی ہے, اٹس اے 24/7 365 ریسپانسبلٹی آن اے وومنس شولڈرز, کہ وہ اس نے بچے کی جب تک وہ ایڈلٹ نہیں ہو جاتا اس کی پراپر ایک رسپانسبلٹی لینی ہے, اس کی اسکول جانا, ان کے یونیفارم, ان کا کھانا پینا, ان کے اپوائنٹمنٹ, سب کو یاد رکھنا ہے.
12: بالکل.
13: تو اس میں مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ اور فنی سی بھی بات یاد آ گئی کہ جب ہماری طرف خواتین جب بھی بنتی ہیں, نیو مدرز ہوتی ہیں, تو وہ بالکل آپ ان کو دیکھیں تو یو کین اسپاٹ دیم فرام ڈسٹینس, کیونکہ وہ دے آر لائک
12: پیپل
13: اراؤنڈ دیم, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو, یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ دا چائلڈ ایز مچ ایز یو ہیو ٹو
12: سپورٹ دا
13: مدر. Okay,
12: exactly.
13: So mother needs to be supported primarily. Child خود ہی سپورٹ ہو جائے گا. آپ مدر کو سپورٹ کریں, اس کو آپ ٹیک کیئر آف ہر, ٹھیک ہے, اس کو آپ کوئی گفٹ دیں, کوئی آپ اس کو پریز کریں دیٹ یو ور تھرو سچ اے ڈیفیکلٹ ٹائم یو ہیو بیکم اے مدر. اور اس پہ ایک بڑا ایک فنی سی ایک چیز جو آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اپنا خیال رکھو, تم ماں بنی ہو پاگل نہیں.
12: That's true.
13: Exactly. مطلب
12: لیکن نہیں,
13: یہ سوسائٹی ہماری ہمیں اتنا زیادہ وہ اوور ویلم بھی کر دیتی ہے, اور ہمیں اس اتنے پیارے رشتے کو ابزارب کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ کرنے کا, انجوائے کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیتی, اور ہمارے اوپر انہوں نے ایک ذمہ داریوں کا एक लिस्ट होती है दैट वी कम अक्रॉस व्हेन वी आर न्यू मदर्स कि यू हैव टू डू दिस यू डोंट हैव टू डू दिस देयर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स.
12: एग्जैक्टली. अच्छा इसमें बड़ी इसमें कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, कुछ कल्चर्स में डिफरेंट होती हैं, कुछ उसमें भी डिफरेंट होती हैं. अब जिस तरह व्हेन माय सन वाज बॉर्न माशाल्लाह तो आई वाज स्टेइंग विद माय मदर इन लॉ एंड शी इज सच अ स्वीट हार्ट के वो तो उन्होंने मुझे तो सुबह नाश्ते में भी दो दो देसी घी के पराठे खिलाए थे और दोपहर को भी
13: माशाल्लाह. सो शी वाज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ.
12: हाँ तो उस वजह से मैं उसमें ये होता है कि वही बात आती है कि अगर आपके पास जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सपोर्ट है ठीक है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी शेयर हो जाती है. जैसे मैं थक गई तो मैंने बच्चे को मतलब अपनी मदर इन लॉ के हवाले कर दिया कि अम्मी आप देखें मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लूं ठीक है. ये भी हो जाता है. ये जिसमें आप कह रही हैं कि फैमिली कल्चर्स में जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है या जॉइंट फैमिली होती है या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यस यू गेट्स बेटर ऑफ रिलैक्सेशन. लेकिन फिर एक्सपेक्टेशंस भी उतनी होती हैं ठीक है. वहां पे फिर थोड़ा सा आप कह रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी चूंकि यू आर अ मदर अ न्यू मदर एंड यू आर ऑल्सो बहु ठीक है डॉटर इन लॉ एंड यू आर ऑल्सो अ वाइफ ठीक है. जॉइंट फैमिली में आपकी तीन जिम्मेदारियां बन जाती है.
13: Exactly.
12: ये आपके लिए चैलेंजिंग होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है. और इस वक्त मेरे ख्याल में ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन हस्बैंड्स ठीक है. उनको भी बहुत कुछ इसमें मेरे ख्याल में रियलाइज करना चाहिए कि मेरी बीवी है जो एक मतलब माँ भी बन गई है जो बहू भी है जो मेरी बीवी भी है. तो अगर आपका पार्टनर आपका हस्बैंड आपका स्पाउस उस वक्त आपका साथ देता है आपके आराम का ख्याल रखता है बेजा बगैर रीजंस के जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई होती हैं अगर वो उनको थोड़ा सा शेड फर्म ली या वो कर ले कि नहीं भाई अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है तो दिस हेल्प्स.
13: एग्जैक्टली इट डज शेयर कर ले रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और इसमें ये होता है कि if I talk about Pakistan because I am coming from Pakistan so I can relate I can understand and I have gone through this thing I have experienced and I have observed that nobody acknowledges that postpartum depression that you go through.
12: Exactly.
13: It's a very very important
12: very
13: thing. nobody even talks about it nobody yes. acknowledges it okay even the most educated husbands won't talk about it.
12: वो यू आर एब्सोल्युटली राइट. और खास तौर पे हम लोगों के लिए जब हम परदेश में होते हैं और हम बिल्कुल अकेले होते हैं
13: बिल्कुल
12: ठीक है और हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा होता है तो उस वक्त वाकई अगर कोई आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लेता है तो आपको बहुत सपोर्ट मिल जाती है. और आप एक हमेशा एक चीज होती है मैं कहती हूँ कि कभी कभी उसके लिए ना आपको बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती. अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कभी कभी ये जुमला भी बोल देना कि नहीं फिक्र ना करो मैं हूँ
13: आई एम बैकिंग यू
12: हाँ और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मैं यहाँ
13: सपोर्ट यू.
12: दिस वन सेंटेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस.
13: It does, no doubt.
12: ये आपकी इमोशनल सपोर्ट होती है तो आपकी इमोशनल सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए आपके स्पाउस का कभी कभी छोटा सा जुमला जो है ना वो बहुत काम आता है. अच्छा ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है और जैसा मैं कह रही हूँ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई रिटन डिबेट नहीं है कुछ भी नहीं.
13: अगेन
12: अंडरस्टैंडिंग है.
13: एग्जैक्टली इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड
12: एग्जैक्टली
13: यू आर गोइंग टू डिवाइड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग योरसेल्फ्स
12: हाँ
13: वेरी नाइसली.
12: तो इसमें ये होता है. अच्छा वो होता है मुझे हम एक घर में गए डिनर पे तो जिस वक्त हम पहुंचे तो उस वक्त मतलब दे वर स्टिल लाइक इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स ना एंड इट वाज सच अ स्वीट गेस्चर कि जब वो हम लोगों को वेलकम करके वो अंदर वो लाउंज में हम बैठने लगे तो हस्बैंड वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ही गोज टू द वाइफ तो उसको कहते हैं कि तुम दो मिनट बैठ जाओ मैं अंदर जाके ना चूल्हा देख वो दम देख के तो चूल्हा बंद कर दूंगा ना. और वो द वाइफ सैट डाउन एट दैट एंड इट वाज सच अ स्वीट गेस्चर कि उसने उसको कहा कि यार तुम इनके साथ बैठ के बात करो आई विल टेक केयर ऑफ द किचन ठीक है. दिस इज दिस आई थिंक दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ جب اس نے ویلکم کر لیا ہے مل لیا ہے تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے اب آپ کی باری ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تھوڑی ٹائم لگا لو, کوئی بات نہیں, جو چاول وغیرہ بریانی دم پہ رکھی ہے وہ میں دیکھ لوں گا.
13: ٹیک اے بریدر, انجوائے ود دی گیسٹس بیکاز یو ہیو انوائٹڈ دیم, ہیو اے گڈ ٹائم,
12: ہیو اے گڈ ٹائم,
13: گڈ چیٹ, اینڈ یس, وائی ناٹ, لائک دی وومن ڈیزرووز اٹ, ا وومن ڈیزرووز اٹ. یا
12: اچھا, آپ کا کیا خیال ہے جو یہ رول ہوتا ہے, جو یہ کریکٹر ہوتا ہے میل ڈومیننس کا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کیا ہماری ایز اے مدر ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو وہ سب کچھ سکھائیں جو ہم اپنے ہسبینڈ سے چاہتے ہیں؟
13: اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ڈسکشن, ٹوڈیز ٹاپک, ریزنگ ریسپانسبل کڈز. اینڈ اف یو ہیو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو دا ریڈیو انسپائر ایف ایم 105.1 0777948182, پلیز ڈراپ یور میسیجز اور کال ٹو گیو یور فیڈ بیک, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ بیک ٹو یو شارٹلی. وی آر گوئنگ ٹو انکلوڈ یور فیڈ بیک, یور کوشچنز ان دا اپ کمنگ پروگرامس ان شاء اللہ. تو افشا, جیسے آپ نے بات کی ریزنگ ریسپانسبل کڈز, ڈیفینیٹلی اٹ پلیز اے ہیوج پارٹ. جیسے جن کلچر سے یا جس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہم آتے ہیں, ہم وی پٹ مور پریشر آن گرلز دین آن بوائز. تو اف یو آر ریزنگ اے گرل اینڈ اے بوائے سائملٹینیسلی ان یور ہاؤس, تو دیر از گوئنگ ٹو بی مور پریشر آن گرل دین آن دا بوائے, کہ شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دا all the like
12: duties
13: as she grows up, as she's growing up, she has to take care of the responsibilities,
12: like safai, khana, kapde, har cheez, matlab wo bachchi ki zimmedari hai, wo bete ki nahi hai.
13: Bilkul. So which is debatable.
12: And so our program continues and we will be back after a short break.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
14: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
15: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
16: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
17: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
18: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
19: Did you know? Bananas are curved because they grow upwards towards the sun.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: Welcome back to Family Matters. Today's topic, as you know, is roles and responsibilities in the home. Before the break, we were talking about why is a girl expected to do chores, not a boy?
12: Basically, responsibilities equal. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हर घर में responsibilities जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं. अभी हम एशियन कल्चर की बात कर रहे थे, इवन के बाद यूरोप के कल्चर में भी होता है कि बाज़ औक़ात बेटे को जो स्पेस दी जाती है या बेटे के उस पर किया जाता है, उसमें उस तरह से बेटियों को नहीं किया जाता. हमारे माशरे में बचपन से एक बच्ची के जहन में डाला जाता है, तुम्हारा काम है घर संभालो, कपड़े धो, खाना धो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, बच्चे पालो, ठीक है. और एक एक बेटे को पाला जाता है बिल्कुल एज अ प्रिंस, एज अ किंग, कि बस आके बैठ जाओ, तुम्हें भैं, अच्छा,
13: दे आर पैम्पर्ड सो मच,
12: पैम्पर्ड सो मच. और दूसरा होता क्या है कि जैसे ही बेटा घर में एंटर होता है, माया वाला लगाती है बेटी को, पानी लाओ भाई आया है, खाना गर्म करके दो भाई आया है. वी आर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग setting an example ki you are the man and you have no responsibilities when you come from outside. You just sit, tumhari biwi tumhare samne lakar ek tray rakhegi jisme tumne khana khana hoga,
13: that's it. And you the wife or
12: hum bachcha pal rahe hain,
13: exactly, they are the wife basically in that case is going to have all the cognitive burden on her mind to manage every household chore, manage children, their schools, everything. And when the husband is back from the work, so that's it. That's all for the day.
12: हाँ,
13: for them.
12: बिल्कुल.
13: तो are you in favor of this?
12: No. आपको मैं अपने घर की बात बताऊं तो my son is 2.5 years older than my daughter. So when he was 3, तो मैंने उस वक्त से अपने बच्चे को, अपने बेटे को स्पेशली छोटी छोटी चीजों में लगाती थी. ये चीज ले आओ, वो चीज ले आओ, बहना के लिए ये चीज रख दो, ये यहाँ पे कर लो, ये वहां पे कर लो. और आपको मैं बताऊं, मैंने मतलब बचपन से उनको उसको काम पे लगाया, ठीक है, कुछ ना कुछ उसे मैं करवाती रहती थी, कपड़े समेटवा लो, चीजें हटा लो. एंड सो स्टिल दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. अब यकीन करें, मेरा बेटा जितनी अच्छी चाय बनाता है ना शाम की, उतनी मेरी बेटी भी नहीं बना सकती बाज़ औक़ात.
13: तो अभी तो आके पीनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी चाय बना रहे हैं.
12: यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आए मेरे घर में, मेरे बेटे के हाथ की चाय पिए.
13: और अगर आप चाय पी रहे हैं तो 07779481822 पे जरूर हमें मैसेज ड्रॉप करें. दिस इज आवर हॉटलाइन. और इंस्पायर FM .org पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं टू सी ऑल द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स एंड द न्यू शोज, एंड देयर इज मच मोर. यस, कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग, व्हेन when we receive a daughter-in-law.
12: Mm-hmm.
13: Okay, so most of the Asian families marry their sons just to bring a daughter-in-law, taki unke ghar ke kaam ka burden share ho jaye. And in most cases, wo agar koi house help pehle aa rahi hoti hai, to usko bhi nikal diya jata hai. Humne aise bahut se cases dekhe hain ki then the daughter-in-law is taking all the responsibility of the household.
12: Basically, मैंने कहा ना cultural thing है, ये आपके उससे match नहीं करती, आपके religion से भी नहीं करती,
13: not at all,
12: और एक humanity से भी नहीं करती,
13: not exactly.
12: अगर आप एक basic सी चीज देखें, तो देखें आप इस्लाम में उसमें देखें तो बहू का या बीवी का मकाम बहुत ऊंचा है, ठीक है, और नेचुरली अल्लाह ताला ने भी कुछ हुदूद मुकर्रर की हुई है, अल्लाह ताला ने भी कुछ की, और ये हर जगह पे, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, इस्लाम में नहीं है, ये बाहर अगर आप वैसे ओवरऑल हर रिलीजन देखें तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज डिवाइडेड है, ठीक है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं है. आप जिस तरह से ये हमारा एक कल्चर बन गया है, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि बास औकात बच्चियां बहुत टफ सिचुएशन से गुजरती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम कर क्या रहे हैं, हम आ कहां गए हैं.
13: इन दिस कंटेम्पररी सिनेरियो द गर्ल्स आर एजुकेटेड. They are coming from an educated background. They are educated. They are doing their post graduations. They are doing their other career
12: masters, PhD, mashallah, the girls
13: career oriented degrees, and they are married to a pampered child.
12: सही बात है.
13: Exactly. So to just move around him and you know just being a puppet. So
12: मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माओ की है कि जब हम अपने बेटों को बड़ा करें तो उनको अगर बादशाह बनाना है, हम लोगों ने एक किंग की तरह उनको बनाना है, एक प्रिंस की तरह हमने उनको बड़ा करना है, ठीक है, तो हमें उनको वो क्वालिटीज भी देनी चाहिए जो एक किंग या एक प्रिंस की होती है. उसमें सिर्फ यू नहीं होता कि आप बैठ के हुक्म चलाओ, उसमें ये होता है कि वो ड्यूटीज और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब कुछ शेयर भी करें.
13: इफ यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड और यू आर ऑन टॉप ऑफ समथिंग, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज on your shoulders than a common person.
12: Exactly.
13: Yeah.
12: The more power, the more responsibilities.
13: Exactly.
12: ठीक है ना. अब अगर आप personally, मैं चूंकि मैंने अपने बेटे को honestly बहुत कुछ सिखाया भी है और बताया भी है, and he अल्हम्दुलिल्लाह he is good with it. मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बेटे को ये सोच कर नहीं करें कि इसकी बीवी आएगी तो वो इसके सारे काम करेगी, आप अपने बेटे को इस तरह ट्रेन करें कि जब वो उसकी बीवी आए तो दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, क्योंकि अ हैप्पी हाउस इज वेयर द हैप्पी वाइफ इज.
13: एग्जैक्टली. क्योंकि शी इज द पर्सन स्पेंडिंग इन मोस्ट केसेस स्पेंडिंग
12: सारी जिंदगी गुजारनी है भाई उसने,
13: मोस्ट ऑफ द time in the house, and then it's not that you are just earning money and contributing financially and things like that. You have to share the daily dose of burdens as well.
12: बिल्कुल,
13: जो आपके daily एक quota होता है burden का, daily chores का quota होता है, वो भी आपने share करना होता है.
12: अब होता ये बासोकात के husbands पूरा हफ्ता busy रहते हैं. बिल्कुल ठीक है. दे गो टू ऑफिस, दे कम होम लेट, यस दे डू नॉट हैव द टाइम कि वो एक एक चीज को डिस्कस करें या एक एक चीज में काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. अगर आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन आप अपनी फैमिली को जरूर दें. आप उनकी छोटी मोटी चीजों में जरूर शेयर करें. अगर आप घर पे हैं, हफ्ते का एक दिन है, आप अपनी फैमिली का टाइम गुजारते हैं, तो आप अपने हाथ से कुछ छोटा मोटा बना के अपनी बीवी को दे सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि बेटा मैं सिर्फ कमाता नहीं हूँ, मैं जो कमाता हूँ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारी वजह से करता हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों का एक एहसास है.
13: अगेन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन आई वुड सजेस्ट सच housewives who are raising children, who are just bound to their houses. मैं उनसे ये कहूंगी कि अपने लिए कोई आप एक्टिविटी, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आपको रिलैक्स करे, जो आपका एक मी टाइम हो, जो आप जिसको आप करने में रिलैक्सेशन फील करें, जो आपको कैथारसिस करने में हेल्प करे. तो डू कीप अ हॉबी. इसमें आपको सोचने का मौका मिलेगा, इसमें आपको अपनी गलती को बेहतर करने का या दूसरे
12: सीखने का अमल होता है.
13: सीखने का अमल होता है. एग्जैक्टली. जब हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आर माइंड इज स्टिल यू नो गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड ऑन दैट डे, ऑन द प्रीवियस डे. और उसमें जैसे आई निट. ओके, सो निटिंग इज बेसिकली अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम फॉर मी. लेकिन उसके साथ साथ my mind is going through all the things that have happened during the day or the previous day or during the week. aur usme mujhe ye thoda sa apne aap ko bhi judge karne ka mauka milta hai, where at what point I was wrong or at what point I should have given some space to my husband or my child. to usme aapko jo hai na, next day you are another person. Next day you are fresh, you are a new person. और क्योंकि आप you had some me time, okay, you had some catharsis.
12: और इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. You can find anything inside the house.
13: Yeah, there is so much on YouTube now. Mm-hmm. Just find what you like. If you like painting, if you like glass painting, if you like to make sketches, if you are good at knitting, if you are good at crocheting. Take that, spend some little amount of money on that and make a corner of your home as your me space.
12: Exactly.
13: Yeah.
12: अच्छा चले, अब तो हम बात करें ना जहाँ husband and wife दोनों हैं और इनकी responsibilities हैं. अब बात करते हैं एक single parent की. अब ये बताएं कि अगर एक single parent है तो वो कैसे मैनेज करे. सारी बात है उसके पास, उसके ऊपर दो फरीकों की जिम्मेदारी है. दो ऐसे उसको दो कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ रहे हैं एज अ मदर एंड एज अ फादर.
13: सो वी आर ऑलवेज रिगार्डिंग सिंगल पेरेंट्स एज सुपर हीरोज.
12: ये तो
13: बट इट्स देर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प इवन इफ यू आर द सुपर हीरो. ओके, देर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर सम सपोर्ट, सम हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम
12: सिबलिंग्स.
13: Siblings, from your friends, from your colleagues, from your neighbors, anyone that you can trust in that particular scenario, you can ask help from. Okay,
12: mm-hmm.
13: And your child, if they are not of age, they are not responsible of carrying your mental burden on themselves. Okay, so you cannot ask your child all the time that I'm the only person for you. I'm taking care of all the responsibilities. You can't make him or her realize this thing every time. So you have to manage your burden all by yourself. Your child can be your support, but not 100% all the time.
12: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं. और मेरे ख्याल है अगर एक सिंगल पेरेंट भी है, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, आपको हर चीज मैनेज भी करनी, उसमें आप अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने उससे जरूर मदद मांगे, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके अपनी फैमिली के लिए. और जब बहुत परेशानियां हो जाती हैं, बहुत जिंदगी है ना, स्ट्रगल है, एंड आई नो आई अंडरस्टैंड दैट life is not the bed of roses. They are all hurdles usme hoti hain. Lekin behtar, ha to lekin basically aapko thoda bahut dusre pe karna chahiye. And there is no shame to ask for help. Kabhi bhi nahi hota. Theek hai, isme koi aisi buri baat nahi hai ki yaar log kya sochenge. लोगों का क्या है, लोग तो बिरयानी खाकर भी सोचते हैं और सादा चावल खाकर भी सोचते हैं आपके बारे में. सो इट डज नॉट मैटर एनीथिंग. यू मैटर, योर लाइफ मैटर.
13: आप क्या सोचते हैं वो पर्टिकुलर सिनेरियो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, आपके बच्चों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, is it good, is it positive, is it negative. You have to think about keeping yourself as a priority, your children as a priority, not your community as a priority. So prioritize kare, ask for support, ask for help. Tell your mother that I need your help today. Tell your sister or brother that you need help for that particular day.
12: कम्युनिकेशन जो होती है यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे हम लोग हैं जिनके यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, फिर हमारे लिए हमारी फ्रेंड्स और हमारी चोजन फैमिली आ जाती है जिससे हम हेल्प कर देते हैं, मांग लेते हैं, हम उनसे सपोर्ट मांग लेते हैं. और मेरे ख्याल में अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशंस है और आप आपके अच्छी फ्रेंड्स हैं, आपकी चोजन फैमिली, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो यस, देयर इज नो शेम टू आस्क फॉर हेल्प.
13: एंड इवन अक्षा, आई वुड से कि इमोशनल सपोर्ट भी यू कैन आस्क फ्रॉम देम, बिकॉज यू आर इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके, योर मॉम और योर फादर बैक इन पाकिस्तान, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो यू आर इन.

0: वो थर्ड पर्सन को नहीं पता होता, आप जो बताते हैं वो सुनते हैं और वो उस हिसाब से आपको मशवरा देते हैं, लेकिन जो आपको देख रहा होता है, ये जो आपके साथ होता है, वो ज्यादा बेहतर असेस कर सकता है। इसीलिए कहते हैं आमतौर पे यही कहा जाता है कि जब आपकी शादी हो जाए तो अपने घर के मामलात अपने तक ही रखो। जितना आप लोगों से राय लेते हैं, जितना आप एक्सटेंड करते हैं, जो स्पेशली जो दूर या बैक होम होते हैं, दे असेस एवरीथिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग, दे डू नॉट लिव हियर, दे डू नॉट सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, सो दे हैव नो आइडिया हाउ टू गिव यू
1: ऑल द स्ट्रगल्स यू आर गोइंग थ्रू, दे कांट एक्चुअली, बिकॉज स्टेइंग बैक इन लाइक Bangladesh, India or Pakistan is totally different when you move here or when you are an immigrant family, okay? You, aapka ek dam se, you move to a 180 degree culture.
0: Twist, yeah.
1: और एक ऐसा सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो जाता है जिसको आपने टोटली खुद से हैंडल करना है, आपने अपने घर को भी खुद से हैंडल करना है, आपने बाहर की भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है, आपने डिसीजंस भी खुद से लेने हैं, और यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल। कोई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दे आर नॉट हेयर टू टेक योर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड ब्रिंग देम बैक, यू हैव टू मैनेज इट ऑल बाय योर सेल्फ।
0: अच्छा, अब हम आते हैं उन एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ जिसमें के नानियां दादियां साथ रहती हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है। चले पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि चले अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो बहुत सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं। अब जैसे मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, शी इज वेरी गुड कुक, ठीक है, तो शी टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किचन ऑल द टाइम। तो हमें वो नहीं होता कि यार अच्छा मेहमान आ रहे हैं या कुछ होते हैं, तो वो खुद ही सारा हैंडल कर लेती हैं। शी इज गुड कुक, शी इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, अगर मैं वैसे उसमें बात करूं तो। अब बाकी रह जाती हैं माशाल्लाह से हम तीन, ठीक है, तो हम इस अपने अपने काम डिवाइड कर लेते हैं, मैं ये कर लूं, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक्सटेंडेड फैमिलीज भी रहते हैं, और अच्छा एक और चीज भी होती है, और वो की चीज क्या होती है कि जब एक न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें अनरिटन अनकंडीशनल या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं जहाँ आपके साथ आपके इन लॉज भी रहते हैं, जिसमें आपके सिस्टर इन लॉज हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉज हो सकते हैं, आपके और लोग भी रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे जब आप आए तो आप लोग रिटन या कम्युनिकेशन के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लें।
1: दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू पॉइंट आउट अफशान, दैट If the grandmother, being the eldest of the house, is taking responsibilities, she is, babysitting your child for 2 to 3 hours while you are away, yeah, for the whole time 9 to 5 while you are away. So, इसमें क्या होता है कि is she the only responsible of the child? Is she going to make decisions for the child as well, or are you going to decide that the child is going to sleep at 8 or 9?
0: Maybe family, this depends, but I think these is the parents' right. आपने देखिए, आपको लड़के कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है. You make your rules, you communicate, and you tell your family members, these are my rules, I am not going to compromise on them.
1: Again, it's how good you communicate and how understanding the whole family is.
0: देखिए, आप अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है इस चीज की, ठीक है, कि आप लड़ने की जरूरत नहीं है. याद रखिए कि घर में झगड़ा फसाद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? अगर आपका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, आपको कोई भी चीज अच्छी है बुरी है शोर मचाने की जरूरत नहीं है. सिट, टॉक, एक्सप्लेन, बी लॉजिकल. आप बताएं कि देखें, मैं आप बड़ी हैं, बेशक आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस तरह से बड़े हों, एक सेट एनवायरमेंट में, टाइम टेबल के हिसाब से. मेरा बच्चा

करके पैसे भी घर लाने, और फिर इस खिलाफ फितरत जो एक काम है इसको करके फिर इसका नाम रखा जाता है तरक्की, एडवांसमेंट, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो कहते हैं हम औरतों मर्दों को बराबरी की सतह पर लाएंगे, तो उनको चाहिए था कि बच्चे भी अगर मिसाल के तौर पर बराबरी की सतह पर लाना है तो फिर हर लिहाज से होना चाहिए। अगर दो औरत के दो मर्द के होते, ऐसा नहीं होता, औरत ही का काम है, उससे बच्चे पैदा होते हैं और मर्द जो हैं उनकी परवरिश करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनको ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। हर लिहाज से बिल्कुल बराबर खड़े करना ये बिल्कुल गैर फितरी काम है। और फिर इस्लाम ने औरत को विरासत के अंदर भी साथ आ फरमाया। इस्लाम से कबल का जो अरब माशरा है उसमें औरत का विरासत में कोई हक नहीं था। दलील ये थी कि औरत कमज़ोर है, ना मुआशी दौर दूब कर सकती है, ना अपना और ख़ानदान का दिफा इसके बस में है, और ना माल गनीमत उसके ज़रिए हासिल हो सकता है, लिहाजा ख़ानदान की दौलत की वारिस वो नहीं हो सकती। इस तरह कम सिन लड़के भी विरासत से महरूम रखे जाते थे, सिर्फ बालग मर्द जो दुश्मन का मुकाबला कर सकें वो विरासत का हिस्सा पाते थे। ये अरब माशरे का एक रस्म व रवाज था। और फिर विरासत में इस्लाम जब आया तो उसने मर्द और औरत दोनों को हक दिए। अरब का माशरा ही नहीं, दुनिया के सभी माशरों ने इसी किस्म के दलाइल की बुनियाद पर औरत को विरासत से महरूम रखा था। ये नरीना औलाद का और इससे भी बड़ी औलाद का हक समझा जाता था। इस्लाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और ऐलान किया कि विरासत में सब इस तरह मर्दों का हक है, इस तरह औरतों का हक है। फरमाया गया कुरान पाक में कि लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून वल निसाए नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून मिम्मा कल्ला बिनु ओ कसुर। फरमाया गया कि मर्दों का भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों का भी इस माल में हिस्सा है जो माल के उनके बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। इस उसूल के मुताबिक कुरान मजीद ने विरासत में औरत और मर्द के हुकूक मुतय्यन कर दिए। बाद तफसीलात हदीस और फिक में मौजूद है, और औरत और मर्द उन दोनों को जायदाद में से हिस्सा मुकर्रर दिया जाएगा। इस्लाम ने विरासत को ख़ानदान में महदूद रखा है और ख़ानदान के अफराद के दर्जा बदर्जा हुकूक मुतय्यन किए। इसमें पहला और सबसे बड़ा हक ये है, सूरह निसा में फरमाया गया आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के हक में हिदायत अदा करता है, एक मर्द का ऐसा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। अब इससे चंद एक बातें मालूम हुई। औलाद में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। विरासत सिर्फ लड़कों का हक नहीं, इसमें लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। नंबर दो, एक लड़के का ऐसा दो लड़कियों के बराबर होगा। फर्ज कीजिए कि मैयत का एक लड़का और दो लड़कियां हैं तो विरासत तीन हिस्सों में तकसीम होगी। यानी अगर एक बच्चा या एक बच्ची है तो तीन हिस्सों में तकसीम होगी, एक हिस्सा जो है वो बच्ची को मिल जाएगा और दो हिस्से जो है वो बच्चे को मिल जाए। दो लड़कियां और एक लड़का हो तो विरासत के चार हिस्से होंगे, यानी इसी तरह जो तकसीम होगी। दो हिस्से यानी निसब तो दो लड़कियों को मिलेगा और दो हिस्से जो है वो लड़के को मिलेंगे। फिर इरशाद फरमाया गया सूरह निसा में कि अगर दो से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए मैयत के तरके का 2/3 है। तो इस तरह कुरान पाक के अंदर बकायदा तौर पर औरतों को हिस्सेदार ठहराया गया विरासत का। माँ बाप का जो हक है औलाद के बाद विरासत में माँ बाप को हक दिया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अन्निसा में, वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुस,
ہمت

0: کے جہاں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں. شو میں اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. 972-501-9390 is the number for the studio. تمام لوگ سننے والوں کو السلام علیکم, نمسکار, ست سری اکال, ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. شو بڑا فن اور مزیدار ہونے والا ہے جی, کیونکہ ہمارا پہلے سے موڈ ٹھیک نہیں تھا. کسی مہربان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ ڈاؤن لگ رہی ہے انرجی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, شو میں جاتے ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو آگے سے انہوں نے بھی کہا ہاں یہ صحیح ہے. تو لوگوں کو پتہ لگ گیا انرجی کو اپ, جب ڈاؤن ہو تو اپ کرنے کے لیے, ڈولڈرمز میں سے جی لو اسپرٹس میں نکلنے کے لیے, اسپرٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کی اسپرٹ کو اپنے ساتھ ملا لینے کے لیے ہم کرتے ہیں یہ شو جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اینڈ دا شو مسٹ گو آن. 972-501-9390. مہربان قدردان بھائی جان تمام سائنسدان جو زندگی کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آرٹ بنانے کی طرف گامزن ہے, یعنی کہ چل رہے ہیں اس طرف, تو ان تمام مہربانوں کے ساتھ یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جی. آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے. کون ہے ہمارے ساتھ ویڈیو آزاد یور آن دی ایئر؟
1: السلام علیکم آزاد جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پائیے پہ آئے ہیں
1: جی, کیسے ہیں آپ؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. حکم.
1: اچھا تو
0: میں کیسے ایکسائٹمنٹ فیک ٹھیک کر رہا ہوں؟
1: جی جی جی, آپ تو آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے بھائی, ماشاء اللہ ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں.
0: فیک ایکسائٹمنٹ جو ہے نا, کیونکہ لائف میں یہ سیکھنا ہے آپ نے کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو اب جب میں فیک کروں گا ہلکا ہلکا, تھوڑا سا انرجی کو اٹھا کے دماغ کو میسج پہنچے گا جی کہ انرجائز ہونا ہے, تھوڑا اپ لفٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ دنیا بھی شامل ہو جائے گی اور ماحول بن جائے گا.
1: جی بالکل صحیح بات ہے. لاسٹ شو واز ایبسولوٹلی امیزنگ آزاد جی, اور آپ کے اتنے اچھے اچھے سب کے پوائنٹس آتے ہیں ایز آلویز. شہناز جی, ہماری سجیلا جی, اور سارے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے, ہیرا سنگھ جی, مطلب واقعی بہت بہت اچھا لگا لاسٹ والا شو. اور منٹ آف دا ڈے آپ کے اتنے سارے بنے نا کلپس اس دن تو, اور گریٹیٹیوڈ والا خاص طور پہ جو پوائنٹ تھا نا آزاد جی, جو آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو آپ دعائیں حاجات پہلے اپنی کس طرح سے کرتے ہیں, سارے شکرانے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بلیسنگز ہیں آپ ادا کرتے ہیں. یقین کریں ایسے گوز بم سے ہو رہے تھے, رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے آپ جس طرح سے بتا رہے تھے, تو اتنی بلیسنگز ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں اپنی جو بھی دعا ہوتی ہے, ہم لوگ تو آزاد جی ایسی دیکھیں چیزیں کتنی گریٹیٹیوڈ کی ہوتی ہیں, مطلب یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ پوری اپنی پہلے بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اپنا شو کرتے ہیں شکرانہ, اس کے بعد آپ جو ہے دعا کرتے ہیں. اور ہم لوگ تو مطلب کیسا ہوتا ہے بس ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, اور مطلب باقی دیٹ واز سو امیزنگ.
0: کنیکشن بنائے بغیر نا, کئی دفعہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی, آپس کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کو, تو میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو توڑنی پڑ جاتی ہے کیونکہ کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکٹنگ میں ہمیں جو چیز سکھائی جاتی تھی نا, آپ اگر کنیکٹڈ, آپ ایک لائن بول رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور ایسا ہی ہے, تو کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونا. وہ بہت فیک سا ہوتا ہے, پھوگا سا ہوتا ہے. جیسے آپ مالٹا خریدے نا, بڑا زبردست قسم کا, اوپر سے جو موٹا موٹا سا ہوتا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں, اندر سے وہ پھوگا نکل آتا ہے تو کتنا منہ بنتا ہے. دوسری طرف چھوٹا سا مالٹ جس کو آپ اسکن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں سے جوس جو ہے وہ اسپاؤٹ کرنے, اوز آؤٹ کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے, اور لال بلڈ مالٹا نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں رتے لال بلڈ مالٹے, کیونکہ ہم تو ہری پور کے نا, خان پور ساتھ ہے ہمارے, تو ان کے مالٹے کاغذی جس کو کہتے ہیں مالٹے, کیونکہ ان کا جو اوپر چھلکا ہے وہ بہت پتلا سا ہوتا ہے, تو کاغذی مالٹے کی طرح آپ اس کو ذرا ٹچ بھی کرتے ہیں, پرک بھی کریں گے تو اس میں سے ایسے جوس نکلے گا. تو یہ والا چاہیے کہ پھوگا پھوگا چاہیے, تو باقی جو رشتے بھی پھوگے ہیں ٹھیک, پلپ اس کا سوکھا ہوا ہے لیکن اوپر سے وہ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں واہ بڑا تگڑا ہوا ہوا ہے, کٹا ہوا ہوا جیسے بندہ نہیں ہوتا اندر سے پھوگا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی. تو زندگی بھی اگر اس طرح بھوگا بھوگا کھیلنا ہے تو پھر مرضی ہے آپ کی, لیکن اگر آپ نے اس میں سے ایک چیز جو کہ اصل فیل کرتے ہیں, جب آپ جوس نکلی ہوئی جو زندگی ہوتی ہے ناپ فیل جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کو, تو جیسے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے, ایک ایسے میئرلی الائیو سا ایک بندہ ہوتا ہے آوازار زندگی سے, بس وہ زندہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ فیلنگ الائیو جو کہ اس کو فیل کر رہا ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں, वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ करता है तो पता चलता है, फीलिंग आती है उसके अंदर से। तो ये बेसिकली अगर मिसिंग है तो इबादत में भी कभी कभी ये सारी चीज़ें ना, आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। अब एक लेडी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था आज, मुझे अगर याद आ गया, उनको मैंने कहा था, या फिर मैं कहीं बाहर कहीं जाता हूँ तो अच्छी बात ये होती है कि लोग मुझे मिलते हैं तो कोई ना कोई उनका क्वेश्चन होता है जो वैसे वो शो में नहीं कर पाते, तो वो मुझसे डायरेक्ट कह देते हैं। फिर मैंने कहता हूँ चले मैं शो में इसके बारे में बात कर लूँगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमाज से रिलेटेड उनका एक सवाल था। जी
1: जी बिल्कुल। और रजा जी इसीलिए देखें, मेरा एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगी कि आपके शो में जब आप अपनी जिंदगी, आपने जो जी है, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो जो हर दिल की आवाज और लोगों के डायरेक्ट वो जाके लगती है उनके दिलों को। इतने सारे हमारे वैसे तो लोग हैं आजाद जी आजकल जो मीडिया है, लेकिन उनकी बातों का इतना असर नहीं होता, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आप उस पर पूरा आपका एक ऑथेंटिक तरीके से आप बोलते हैं तो वो दिलों तक डायरेक्ट पहुंचता है। हर इंसान आपका शो सुन के कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहे हैं, और उनके दिल तक पहुंचती है वो बातें, तो इसीलिए कि उसमें सच्चाई है। आपकी कोई भी बात, जब आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है दादी कि जो लोग भी आते हैं ना अपने आराम से, इवन दो कि वो बहुत शुरू में इतने डर भी रहे होते हैं, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल करते हैं और वो फिर अपनी बातें करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी
0: असल में ये
1: बहुत
0: है, लोगों के अंदर जो डर भी है ना वो भी हमारा पैदा किया हुआ है, ये हमारी सोसाइटी का पैदा किया हुआ है। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई लोगों क्या सोचेंगे, इसने हमारी जिंदगियां खा गए हैं, 200-400 साल से हम यही सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे। बाद में हमें पता चला लोग तो घामड़ होते हैं, लोग तो एक छोटा सा सिस्टम नहीं बना सकते, वो अपने घर का सिस्टम, अपने घर का बजट नहीं बना सकते, वो अपना रास्ता मुतय्यन नहीं कर सकते, वो अपने गिफ्ट्स को नहीं जानते, वो कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन उनको नहीं आती, वो किसी को अपनी बात पे कन्विंस नहीं कर सकते, लंबा वो किसी के साथ चल नहीं सकते। ये लोग क्या करते हैं उसकी मुझे इतनी टेंशन है, मैं तुक नहीं बन रही थी। हमने भी 30 साल उनके डिप्रेशन में और टेंशन में आके देखा, फिर मैंने देखा ये हैं लोग, ये लोग, इनकी तरह बनना चाहता था मैं, इनकी तरह हम बनना चाहते हैं, इनको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, इनको हम खुश करना चाहते हैं, इनको तो खुदा नहीं खुश कर सका, फरिश्ते नहीं खुश कर सके, इनको तो ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो इन्हें चाहिए थी, जो डिज़र्व भी नहीं करते वो भी मिल जाए तो उससे खुश नहीं होते, और मैं इनके पीछे पड़ा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। वो जितने गए गुजरे हैं हम उनसे ज़्यादा गए गुजरे हैं, इसीलिए जिस किस्म का लीडर होता है ना उस किस्म के फॉलोअर्स होते हैं, तो जितना वो गया गुजरा होता है उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं, और जितना वो कैरेक्टर वाला होता है, इंटेग्रिटी वाला होता है, चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेने वाला होता है, उसके साथ चलने वाले भी वैसे ही होते हैं, और जो नहीं होते वो अलहदा हो जाते हैं बहुत जल्द, घोड़े और गधे।
1: जी
0: तो ये सिंपल है, एक ट्रूथ को एक्सेप्ट ना करें, कोई तुक नहीं बन रही है सारे काम की। मैंने क्या कहा था, मैं वो लाइन क्या थी आजाद थॉट्स में से, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस। जब आप तुक बना देंगे किसी बात की तो बेतुके लोग, बेतुकी बातें, बेतुके रिश्ते, वो सब उनका तुक्का मिस हो जाएगा, ठीक है। और जब तुक्का ही मिस हो जाएगा तो छली के अंदर से तुक्का आप निकाल लेंगे तो दाने कहाँ हैं, ऊपर लगेंगे कैसे वो
1: जी।
0: तुक्के का टाइम खत्म होता है जब उसके ऊपर छली आपने भून लिया, अब आप उसके दाने निकाल रहे हैं, या सूख गए हैं तो उसको आप गंदम निकाल रहे हैं, या कौन उसका निकाल रहे हैं, या जो भी छली होती है किसी भी किस्म की, लेकिन उससे पहले अगर छली है ही नहीं नीचे तो वो उगेंगे किस चीज़ के ऊपर। तो किसी भी चीज़ की तुक बनाने का ये याद रखेंगे, इसका तुक्का होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर जो चीज़ लगेगी वो किस चीज़ पे लगेगी, कानून में से एक जगह मिसिंग है। तो जब एक तुक, रिश्ते की एक तुक मिसिंग है, मतलब एक चीज़ मैंने हासिल कर ली उसमें मुझे खुशी नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे एहसास नहीं मेरे अंदर पैदा हो रहा, तो वो सब फालतू है। कुछ दिन के बाद जब ये फालतू फालतू चीज़ें करते हुए, इसीलिए तो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, इसलिए तो आप फिर क्या होता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई गमखार नहीं होता, कोई शेयर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हर एक से डरते रहते हैं, इसको पता लग गया तो क्या होगा, उसको पता लग गया तो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, और ये हम खुद मसाइल पैदा करते हैं। तो इससे बाहर निकलेंगे जब ज़िंदगी, जब जिसने खुशी देखी नहीं, वो मरी हुई चीज़ें जो उसके सामने लोग डाल जाते हैं उसको वो खुशी समझते हैं, तो वो उसको लगता है यही खुशी थी, लेकिन जब वो खुशी देख लेता है, जब वो सच देख लेता है, जब उसकी एग्जिलरेटिंग किस्म की एक जो फीलिंग होती है, ऑसम किस्म की जो फीलिंग होती है, जब वो देख लेता है, तो उसके बाद वो बार बार, ये नशा करने वाले नशा क्यों करते हैं, इनको जब हिट लगती है, ये डोपामिन के चौथे, सेरोटोनिन के चौथे छठे लेवल पर जब इनको एक हिट लगती है तो उसके बाद वो बार बार उसी हिट को पाने के लिए ये नशा करते हैं। कुछ अरसे के बाद इम्यूनिटी हो जाती है पैदा, फिर ये और ज़्यादा डबल ट्रिपल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको वो हिट चाहिए। बिल्कुल वो बुराई की हिट है, इसी तरह अच्छाई की भी हिट होती है। आपको अगर हिट लग गई, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड आपको अंदर से मिल गया, एक अच्छा दोस्त आपने दोस्ती फील कर ली, एक अच्छा दोस्त आपको मिल गया, कहीं आपको स्ट्रेंथ किसी जगह पे फील हो गई अपनी, अगर कोई कैरेक्टर पे या इंटेग्रिटी पे या किसी स्टैंड के ऊपर, एक दफ़ा वो आपने फीलिंग देख ली तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम अगर हम फर्स्ट क्लास में सफर करें जिनको पता नहीं होता, फिर उसके बाद इकोनॉमी क्लास में नहीं सफर कर सकते। तो जो आप जैसे कहते हैं ना, जो लोग छोटी बातें करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं होती, तो वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। जो लोग जी चुके होते हैं उनको उनको लाइफ का पता होता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक और पॉइंट मेरा ये था अजाजी, कि आजकल सर्दियां हैं, वेकेशन है, हॉलीडेज हैं, तो हर चीज ना बंद लग रही है, लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन हर चीज जो है ना डल सी लग रही है। लोग खास आ जा नहीं रहे कहीं बाहर, सब घर में रहना पसंद कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में जो खास ये सीजन आता है हमारा, इसमें हमें क्या करना चाहिए?
0: सर्दी में हर चीज सुकड़ जाती है ना, तो इस तरह बंदे भी सुकड़ जाते हैं, रिश्ते भी सुकड़ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़, और स्पेशली ये जो हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा है इसकी वजह से काफ़ी ग्लू, और ऊपर से बारिश और अंधेरा जल्दी हो जाना, एक ग्लूमी ग्लूमी सा एक माहौल है। ठीक है जी, और इसको कैसे, अब इसको फ़न कैसे बनाना है, इसके लिए मैं ज़रूर इसके बारे में बात करता हूँ। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो। हमारे पास कोई मेहरबान हैं जी, बड़े दूर से आए हैं, उनसे करते हैं बात। रेडियो आज़ाद, यू आर ऑन द एयर एंड ऑन व्हाट्सएप।
2: आजाद जी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम जी।
0: क्या हाल है सर, ठीक ठाक हो?
2: बिल्कुल बढ़िया सर जी।
0: आप आए या ना आए, देखें आपकी हाजिरी लोग लगा जाते हैं आपका नाम लेके।
2: मैं सर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जिस हिसाब से, मुझे लगता है मैं, क्योंकि वही बात आ जाती है, इतना कुछ कहने को है कि मैं खुद भी कई बार सेंस नहीं बना सकता। मुझे लोगों को वो बातें मेरी अच्छी लग जाती है।
0: इसका मतलब है कि वो जो है ना कनेक्टेड हैं, रेलेवेंट बातें हैं सारी, जो भी आप कहना चाहते हैं। और भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, वो उसमें से गुजरे हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको एक ऐसी ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें से आपको रिकग्निशन एक्चुअली उन थॉट्स की होती है जो आप पेश करते हैं, जो आप बातें करते हैं, उससे लोग जब रिलेट करते हैं तो साथ साथ आपको आपकी एक्चुअली थॉट्स की रिकग्निशन है। ये हम बंदे पे चले जाते हैं कि बंदे की बड़ी तारीफ हुई या बंदे के बारे में लोगों ने ऐसा कुछ कहा, लेकिन जो भी कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम के अंदर, कंट्रीब्यूशन होगा, गिविंग होगी, तो आपको रेसिप्रोकेशन होगी। बस इतनी सी बात। सारा काम देखें रब कब से दे रहा है, सारी दुनिया घूम फिर के रब तक आ जाती है, हर इल्म हर नॉलेज आखिर में रब के पास चला जाता है घूम फिर के। कुदरती अमर है ये, कुदरती ऐसा होता है। ये साइंस कहती है जी रूह क्या चीज़ है, फिर घूम फिर के नेचर तक पहुँच जाते हैं। कोई एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की बात होती है, वो घूम फिर के जी नेचर में ऐसे है, वहाँ पे जा पहुँच जाते हैं, तो घूम फिर के चीज़ें वहीं वापस चली जाती हैं। तो गिविंग करने से ही, चाहे वो आपकी थॉट्स में गिविंग है, चाहे वो आपके एहसास की गिविंग है, चाहे वो कनेक्शन है लोगों के साथ, कुछ भी है, तो बस जब आप वो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसके खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। और अपने आप को हम वैसे ही छोटा समझते रहते हैं क्योंकि आपने अपने आप को बाहर निकाला ही नहीं ना, आप दुनिया के बाजार में आए ही नहीं हैं, तो कीमत कैसे पता चलेगी? हीरा बाहर ही नहीं निकला, वो छुप के बैठा हुआ है। वो कह रहे जी मैं कोयले की कान में पैदा हुआ हूँ, तो वो अगर कोयले की कान में तो करोड़ों कोयले निकले हैं, तो उसमें से एक हीरा निकलता है, तो अगर वो बाहर निकला है तो थोड़ी बहुत स्टर तो क्रिएट होगी ना।
2: वही सर जी, मेरे पास अभी स्टूडेंट्स अभी क्लास चल रही है, लास्ट टाइम भी थे, तो वो मुझसे बातें करते हैं और मुझे कहते हैं कि आपसे बातें करके अच्छा लगता है। और मैं सोच रहा होता हूँ मुझसे एक एज डिफरेंस है, इनको क्यों अच्छा लग रहा है। मैं उस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं जितना मेरे से होता है मैं इनको बताता हूँ, लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं विद फुल ऑनेस्टी उनको बता देता हूँ। आई थिंक मे बी उनको ये बात अच्छी लग जाती है
0: जी। ऑनेस्टी जो है ना, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, ये तीन चीजें याद रखिएगा, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी. जिस जो इंसान भी जितना भी नेचर से कनेक्टेड होगा, ये सारी चीज़ें उसके दिल पे असर करेंगी. और जो बंदा जितना भी शैतान के चक्करों में होगा और उसने अपना दिल काला कर लिया या उसने अपनी सोचें जो है ना वो करप्ट कर ली हैं सॉफ्टवेयर, उसका इन तीनों चीज़ों से उसकी जान जाती है. सच से उसकी जान जाएगी, ऑनेस्ट बंदे से, ऑनेस्ट फीडबैक से उसकी जान जाएगी, ठीक है. और तीसरा, सिंप्लिसिटी के बजाय वो हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल और पता नहीं क्या क्या करेगा, मुश्किल से मुश्किल करता जाएगा, उसकी जान जाएगी, क्योंकि डेविल इज इन द डिटेल्स. तो ये जब भी आप ये काम करेंगे. और दूसरी बात, एक चीज़ जो मुझे आपको ज़रूर कहनी है और आपकी तरह के जितने भी लोग हैं उनको कहनी है, क्योंकि मैं खुद ऐसा था. मुझे एक ज़माने में एक आदमी मिला, बुज़ुर्ग थे, उस आदमी ने सारी चीज़ें उसकी उल्टी थी, जो कुछ उसने कहा वो उल्टा होता था, सब कुछ उल्टा था. लेकिन उसने एक ऐसी बात की, हर आदमी की एक उनकी ऐसी बात थी जो मेरी ज़िंदगी में परमानेंट मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और जो मुझे वैसे कभी समझ नहीं आती थी, मुझे उस बंदे की बात से वो बात समझ आ गई. ठीक है, इससे हमने सीखा ये कि एक आदमी 100 गलत बातें आपसे कहे और वो कभी भी वो काम ना करे, लेकिन उसकी एक दी हुई बात जो है, आज तक जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ या मेरे कुछ बात उनके बारे में होती है, तो मैं उनको इस एक अच्छी बात का क्रेडिट ज़रूर देता हूँ. उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, और उनके ये भी अल्फाज थे कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं. तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ये मोहब्बतें, ये इज्जतें, ये लोगों की बातें जो है ना बोझ लगती हैं, क्योंकि जब लोग इनलाइटेंड नहीं होते हैं, जब लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं या उनकी एक कंडीशनिंग कर दी गई है, उसी तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं वो, उसी तरह की इज्जत और उसी तरह के पीछे भागना चाहते हैं आपके, तो आप एक ना घबरा भी जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं एक वक्त के बाद, फिर आप बहुत सख्त भी हो जाते हैं. तो उन्होंने मुझको एक बात बताई थी, और उन्होंने कहा था ये अभी से नहीं, ये मेरे साथ बचपन से हो रहा है, मुझे लोग बहुत तंग कर देते हैं, मैं जान छुड़ा के फिर लोगों से भागता रहता हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर रब ने एक फ़र्ज़ करो एक चीज़ रखी है कि लोग आपसे प्यार करेंगे, ये एक हकीकत है. अगर आप जितना भी इससे भागेंगे, आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल करेंगे, आप खामखा इरिटेट होंगे, आप वैसे लोगों से दूर होते रहेंगे, लेकिन ये हकीकत बदलेगी नहीं. कुछ लोगों से लोग कुछ उनकी इज्जत करते हैं, कुछ लोग उनसे प्यार करेंगे, कुछ लोग उनकी बात सुनेंगे, बस रब की तरफ से हर बंदे का एक अपना गिफ्ट है. तो आप बजाय इसको डिनाई करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें, एम्ब्रेस कर लें इस फैक्ट को, और उसके बाद लोगों को करने दें जो वो करते हैं, और जो गलत कर रहा है वो आप सुन लें, समझ लें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं आप उसको रेसिप्रोकेट भी करें, चुप कर जाएं या अवॉइड कर लें, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी. आपके ना मानने से कुछ बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही होगा. तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़ात में, अपने जहन में, मैंने हर बंदे को, जिस तरह के भी लोग एक्सप्रेस करते हैं अल्फाज में, कोई मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक्शंस में करते हैं, कोई उनका अपना एक तरीक़ेकार है उसमें करते हैं, मैं जितना कर सकता हूँ रेसिप्रोकेशन उतनी कर देता हूँ, जितनी ऑनेस्टली हो सकती है मुझसे या जिस तरह की हो सकती है. बाकी जो मेरी नेचर में नहीं है, जो मेरे मैं जिससे तंग होता हूँ, इरिटेट होता हूँ, मैं ना उन चीज़ों का जवाब देता हूँ, ना उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ, ना कुछ और, तो उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है. तो इस तरह एक तो हम्बलिंग भी है ये चीज़ कि आपने एक चीज़ जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा बार बार यार मुझ में ऐसा क्या है या इसमें ऐसा क्या है या उनमें ऐसा क्या है या मुझ में तो कुछ भी नहीं है, इस डिबेट से आप बाहर निकल जाते. समझ आई?
2: जी सर, हो सकता है. मैंने पिछली
0: जी ये कर पाएंगे आप, हो सकता है.
2: मैं इसी रिलेटेड बात करना चाह रहा था, इससे रिलेटेड बात करना चाह रहा था. पिछली दफा आपने जैसे समझाया था कि अगर आप 15 सेकंड वो गैप दे दें, तो मैंने वो ट्राई किया और मैंने महसूस किया कि वो 15 सेकंड मुंह बंद रखने से बहुत सी आमतों से बंदा बच जाता है. एक तो आपको वो जो फटाफट आपको रिएक्शन देने की पड़ी होती है, आप उससे बच जाते हैं, और आप उससे बच जाते हैं जो कुछ आप नहीं कहना चाहते, और इन द मोमेंट यू से समथिंग एंड देन यू रिग्रेट, उससे बच गया मैं. और इससे मैंने पाया कि मेरे अंदर सुकून बहुत है. और दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व करी आजाद जी, जब पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि बेटे के नाखून से, पैर पांव के नाखून से खून बह रहा था, वो 2 दिन बाद रात को 2 बजे बेड से गिर गया. तो हम सुबह 3 बजे इमरजेंसी में बैठे. पहले तो मैंने वही वैसे ही रिएक्ट किया जो मैंने पिछली दफा किया, मैंने अपने आप को पीटा, फिर मैंने क्यों मैं कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट स्टॉप, असेस द सिचुएशन, और जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं अपने आप से बैठ के बात करूंगा अभी मैं क्या कर सकता था
0: या उस सिचुएशन beating yourself up would have been the right thing to do अगर आपने लात मार के उसको गिराया हो, ऐसा तो नहीं किया ना आपने?
2: नहीं,
0: तो जब आपने नहीं गिराया, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कई चीजें जो कि होती हैं, ओकेजनली होती हैं, एक्सीडेंटली होती हैं, इंसिडेंटली हो जाती हैं, उसमें अगर इस तरह का रिएक्शन देंगे तो एक तो वो चीज़ हो गई, वो फर्ज करें आपकी बेगम साहिबा, एक तो एक बच्चे को कुछ हो गया, तकलीफ होगी, वो उनको स्ट्रेस है, फिर आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे और ओवरवेलमिंग काम हो जाता है, ठीक है?
2: Exactly.
0: और वो हेल्प करने के बजाय एक्चुअली कोई आप हेल्प नहीं कर रहे बल्कि और मुसीबत डाल रहे हैं, अगले बंदे को समझ नहीं आती, फिर वो यू नो पौंतर सा जाता है।
2: बिल्कुल सर, ऐसे होता है।
0: हाँ, तो इससे आपने दो तीन चीजें अपने ऊपर काम भी हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं, जब आदमी को गुस्सा कब कोई ऐसी चीज होती है ना, मेरे साथ भी होता है, तो उस वक्त ना हर चीज बुरी लग रही होती है, अगला बंदा अगर आगे स्पेशली अगर वो बोला आगे से, फिर तो बहुत सख्त काम हो जाता है, ठीक है, कि यानी गलती नहीं मान रहे और यू नो और बहुत सारे मसाइल होते हैं, और अगर वो देख भी नहीं रहा और ध्यान भी नहीं दे रहा, या उसने उसको जो आपको एडिक्वेट एक्शन रिएक्शन चाहिए जिसके वजह से आप काम डाउन हो जाएं, वो कमबख्त सब कुछ करता है सिवाय वो रिएक्शन देने के, ठीक है, वो हर वो गलत काम करता है, आगे से एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉजिक देते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर उल्टा सीधा सब करते हैं, वो एक काम नहीं करते कि चुप रहें और आपकी तरफ कम से कम ध्यान दें कि कोई बात हुई है, और शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं आएगा। तो जब तक ये नहीं आता ना, आपका जो है ना बॉनेट गर्म होता जाता है आस्ते आस्ते, ठीक है? तो इसका एक और मैंने तरीका ये निकाला जिससे लोग घबरा भी जाते हैं, डर भी, जैसे ही कोई ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल गैसकेट उड़ाने वाली हो ना, रादर देन उस वक्त अपने पे काम करना या सोचना या कुछ और करना, एकदम सिस्टम को शट ऑफ हो जाना चाहिए और आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। कमरे में है तो बाहर चले जाए, बाहर है तो घर से बाहर चले जाए, ठीक है, कुछ भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के, डिसकनेक्ट, डिसएंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एनवायरमेंट वही चीज रहेंगे तो, और थोड़ी देर के बाद ना वो जब इम्पल्स आपके काबू में आ जाएगी तो उसके बाद फिर वापस आके जो भी कुछ, क्योंकि बाद में सॉरी करना और यू नो इरिटेट होना, गला ख़राब करना, ये सब गला भी ख़राब हो गया, आप इरिटेट भी हुए, आपने जो काम पहले किया था उस पर भी सारी मट्टी फिर गई, फिर आप सॉरी भी करेंगे या कुछ भी होगा या नहीं करेंगे या शर्मिंदा शर्मिंदा से रहेंगे, इन सारी एनर्जी को बचाने के लिए एक ही बात है, डिसंगेज कर लें, और थोड़ी देर बाद वो बेटर सेंस खुद ब खुद जो है ना वो प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो आप ऐसे नहीं हैं, तो वो जब चीज़ ने रिएक्ट किया तो वहाँ आपने कुछ करना है। ये मुझको समझ, ये मैं अपनी एलर्जीज के साथ भी ऐसे ही करता हूँ जो मुझे होती हैं, जिन जिन चीज़ों में फ़ौरन जो भी मुझे अब तरीका आ गया इतने सालों में, 20 साल में 30 साल तक एलर्जीज से डील करने के बाद अगर मैं अपनी एलर्जीज और हर चीज़ समझ गया हूँ, तो ये जुल्म नहीं है कि मैं अपने जो मेरे सिस्टम को मैल फंक्शन या सिस्टम में जो रिएक्शन होता है मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, उसको भी समझ जाऊँ मैं कम अज़ कम, और उसके लिए भी मुझे जो दवा और दारू करना है वो भी मैं कर दूँ, ये भी मैं ही करूंगा। अगर आप ये कि अगला बंदा ऐसे कर ले, तो वो कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्चुअली रिएक्शन एक ही होगा और वो पॉजिटिव होगा और वो कुदरती आपसे मैच कर जाएगा, वरना ऐसा होता नहीं। तो दूसरों पे अगर हम अपने ट्रिगर्स दूसरों पे रखेंगे वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कंट्रोल अपने पास ले आया, और जब कंट्रोल आपके पास आ गया देन यू कैन मेक चेंजेस।
2: मैं कब तक सॉरी बोलता रहूंगा? व्हाट टाइम आई कीप अपोलोजाइजिंग? देयर बी टाइम एंड प्लेस, आई नीड टू वर्क ऑन मायसेल्फ, एंड मोर आई ऑब्जर्व मायसेल्फ मोर आई लर्न अबाउट मायसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई कीप रिलेइंग आउट टू पीपल।
0: चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। फर्ज करें कोई बंदा है, वो बार बार वही गलती कर रहा है जो आप अभी कर रहे हैं, अपने आप को सामने रख के साइड पे करें, और वो बंदा बार बार गलती करता है और बार बार सॉरी कर रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक वो सॉरी किए जा रहा है, लेकिन उसी बात पर सॉरी कर रहा है, आपका दिन ब दिन जो उसके खिलाफ रिएक्शन आपके अंदर आएगा ना वो बढ़ता चला जाएगा, इरिटेशन बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहां पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: रिश्ता नेटवर्किंग। आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आजाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सके अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। Only on Inspire FM.
11: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Ghussa badhta chala jayega. Aisa hi hai?
2: Aisa hi hai.
0: To apne saath bhi aisa hi karna hai phir. Ki yaar mere se ek hi cheez, kab tak main wapas ja ke wahin se shuru karunga basic se. तो अपने ऊपर भी गुस्सा करने का ये तरीका, फिर आप डिसएंगेज कर ले. मैं महीना महीना दो दो महीने नहीं बात करता लोगों से, क्योंकि उनको भी अगर एहसास नहीं है तो इससे अच्छा फिर पीछे ही हट जाएं परमानेंटली. और अगर मेरा कंट्रोल मेरे नहीं है तो फिर भी वो मुझे चीज़ ट्रिगर कर रही है. एलर्जीज जिन चीज़ से मुझे होती हैं, मेरा सांस बंद होता है, छींके मार मार के मैं बेहोश होने वाला हो जाता हूँ, तो क्या मैं उसके लिए अवॉइड नहीं करता? तो इस तरह लोगों से भी अगर आपको एलर्जी और वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आप पीछे हट जाएं उनसे, दैट्स ऑल. जब तक आप इस काबिल नहीं होते कि कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, जब तक आपकी एलर्जीज उस पर काम कर करके डम डाउन कर करके उनको, या जो भी आपने उसके ऊपर करना है, इम्यूनिटी अपनी बढ़ा नहीं लेते, उस आदमी उस एनवायरमेंट या उस जगह पे नहीं जाना फिर. ये एक्सट्रीम केसेस में होगा.
2: बिल्कुल. और मुझे किसी की दो लाइनें बड़ी अच्छी लगी, वो यूट्यूब पे मैं सुन रहा था उनको. वो कहते सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है. तो मुझे लगा ये तो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ, मैं दूसरों को क्या बताऊंगा.
0: तो ये अगर हमने ये देखना है ना, ये मुझे इसी पे तो मैंने स्टैंड लिया था कि भाई हजारों सालों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग आ रहे हैं वो भी एक्सक्यूज, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं फलां हूं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, खुदा ने ऐसा किया. मैं कहा चलो एक ऐसा बंदा पैदा करते हैं दुनिया में, आप खुद ही क्रिएट करते हैं, जिसके खुदा पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिसके लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है. आपका जो भी डीलिंग हुई उस डीलिंग के, उन्होंने जो किया आपने उस डीलिंग के हिसाब से उनका उनका जो रिजल्ट उनको वापस कर दिया, जितना उन्होंने किया आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके उनको दे दिया, आपने हिसाब सेटल कर लिया, बस ठीक है. और कोई गिला शिकवा नहीं. अगर किसी ने किया तो आपने भला किया तो उसको आपने कॉम्पनसेशन की, किसी ने बुरा किया उसके हिसाब से आपने उसके साथ डीलिंग कर ली. लेकिन और फिर उसके आगे बढ़ गया, कब तक उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं बातों में उन्हीं एनवायरनमेंट में उलझे रहेंगे? इस तरह हम जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे. एक ही सबक जो बार बार सीखता है ना, उसकी कोई जिंदगी नहीं होती. वो सीख लिया, अब आगे निकले कुछ और सीखें. ब्रेन काम करता है जब कोई नया टास्क मिलता है उसको, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए चैलेंजेस उसको मिलते हैं, तो वो और ज़्यादा बेहतर काम करता है और ज़्यादा बढ़ता है. एक इंस्ट्रूमेंट बजाते रहेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट ही आप वो ब्रेन वो सेट हो जाएगा. आपको उसके बाद सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की. बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, बाकी लोगों के साथ आप डीलिंग करेंगे, चीज़ों को सेटलमेंट ऊपर नीचे करेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है ब्रेन के फंक्शंस को और अपने आप को ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मजबूरी है इंसान की कि वो नया सीखे, नया करे, नया कम्फर्ट में आ जाना. कंफर्ट जोन के अंदर वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सीखेंगे कुछ नहीं. नॉवल्टी जो होती है ना, न्यूनेस ऑफ थिंग्स, जब तक वो नहीं आएगी, जब तक आपका ब्रेन को और आपकी बॉडी को चीज़ें चैलेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. वो जोन ऑफ नोन के अंदर ही, कंफर्ट के अंदर ही आप गिरफ्तार रहेंगे. और फिर उसके खिलाफ जब एक वक्त आएगा जब चीज़ें उसके खिलाफ होने लगेंगी तो आपके हाथ से फिर चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी. इसीलिए डिफरेंट किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंट में आपको जाना चाहिए, डिफरेंट किस्म के आपके जो रोज़गार के तरीके हैं, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग योर इनकम एंड स्टफ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होने चाहिए. कोई भी एक चीज़ गिर जाती है, यहाँ किसी एक ही दोस्त के ऊपर बैठे रहते हैं लोग, वो दोस्त जब जिंदगी से निकलता है उसको पता नहीं चलता ऑपरेट कैसे करना है. डिप्रेशन आता है, बहुत लंबा टाइम ज़ाया हो जाता है बाउंस बैक करने के लिए. किसी की कोई शादी टूट जाती है, उन्होंने सब कुछ बीवी, जैसे ही शादी टूट गई उन्होंने सब कुछ बीवी के इर्द गिर्द बनाया होता है या शौहर के इर्द गिर्द बनाया होता है. उनके कोई दोस्त नहीं होते, उनका कोई पैशन नहीं होता जिसको वो परसू करें, उनके कोई ऐसी रिलैक्सेशन का और कोई सामान, कोई ऐसे दोस्त ये नहीं होते. वो कट जाते हैं लोगों से और उसके बाद फिर उन्हें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता. फिर वो कभी बंदे पे, फिर खुदा पे, फिर नेचर पे, फिर इस किस्म की. कम अकल लोग जब अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग ठीक नहीं करते तो फिर वो गिला शिकवा बहाना बस ये बातें करते रहते. क्योंकि खुदा ने आपको मौका दिया है, आपके मुख्तलिफ किस्म के दोस्त क्यों नहीं, एक करीब तरीन 4-6 दोस्त होने चाहिए. उनमें से एक मर सकता है, दूसरा बिगड़ सकता है, तीसरे का दिल दिमाग बदल सकता है, अभी भी 3 हैं. इनके साथ आप प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे. आप जो भी आपका पैशन है या ज़िंदगी का मकसद है वो उससे आप अनहिंज, उससे आप बिल्कुल आपके पाँव नहीं उखड़ जाएंगे. जिंदगी इसलिए नहीं मिली थी कि आप एक शादी कर लें या एक बच्चा पैदा कर लेंगे या एक दोस्ती सिर्फ करेंगे या एक मुद्दे से मोहब्बत करेंगे आप। ये हमने खुद ड्रामा बनाए हुए, रब कहीं किस इसके बारे में ऐसी कोई बातें नहीं। हमारी कैपेसिटी बड़ी कम है, हम बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर सारा कुछ उस बंदे पे लाद देते हैं, फिर वो बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन के वजन के अंदर दब जाता है और हमें ना सोचने का कोई तरीका आता है, ना वो हम उससे खुश हैं, ना हम उसकी किसी बात से फिर खुश हैं, और फिर दुखी दुखी से रह के अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर लेते हैं। ये अहमकों की ज़िंदगी है, ये अहमकों की जन्नत में ऐसा होता है। एक बेस्ट फ्रेंड, एक फलां, एक नौकरी, एक तरीका पैसे का, ये सब चीज़ें जैसे ही वो चीज़ आपके हिलती है आप पूरे के पूरे हिल जाते हैं और फिर पूरे की पूरी इंसानियत की कोई मतलब नहीं रहता, खुदा की तरफ दिल नहीं जाता फिर आपका। हालांकि ये सब इनेप्ट लॉस है, अनस्किलफुल हैंडलिंग ऑफ लाइफ की वजह से हुआ ही। इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, आपके करीब तरीन लोग जिंदगी के माँ बाप मर जाते हैं, दोस्त बेहतरीन मर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के करीब तरीन लोग जिनकी वजह से आपने ज़िंदगी एक सर्टन तरीके से बनाई होती है वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो फिर ज़िंदगी लोगों के काबू से निकल जाती है और फिर अजीब दुखी दुखी सी वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको और दूसरों को भी वो ये बताते हैं कि ज़िंदगी ऐसे है। बिल्कुल ऐसे नहीं है ज़िंदगी, ये हमने ऐसा किया है, हमारी कैपेसिटी चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा है लेकिन हम ऑपरेट नहीं करना चाहते, हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट के अंदर गिरफ्तार होके चाहते हैं अब ये कंफर्ट आखिरी दिन तक ऐसा ही रहे। इंसान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परमानेंटली ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता परमानेंटली। इंसान उसकी ज़िंदगी में कभी क्या होगा, कभी उसके फाइनेंशियल मसले होंगे, कभी हेल्थ के मसले होंगे, कभी फैमिली के मसले होंगे। आपने अगर किसी के साथ चलना है तो अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे दोस्त बने तो अपने फाइनेंसेस, अपने रिश्ते, अपने मामलात सारे जब आप सेटल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो क्वालिटी टाइम का आपके पास किसी दोस्त के लिए वक्त होगा, तो वो दोस्ती पनप पाएगी और लंबे अरसे तक आपको दोस्त से वो फीलिंग आती रहेगी। लेकिन ये जो लोग बाकी होते हैं, ये कई लोग आते हैं जी दोस्ती में फलां, ये वो सिर्फ फटीक देते हैं आपको, सिर्फ परेशान करते हैं, सिर्फ दुखड़े सुनाते हैं, सिर्फ उनके एक लाइफ में मसले होते हैं और फिर आप इसीलिए लोगों से अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई नई बात, कोई नई चीज़ हो। और ये कि मसले ना बताएं ऐसा नहीं है, शेयरिंग और बात है, ये कि ज़रूरत के वक्त दोस्त आपके काम ना आए, आप उसे एक्सपेक्ट ना करें, ये भी और बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुसलसल एक ही बात करते रहना, मुसलसल एक ही तरह का रोना रोते रहना, मुसलसल एक ही चीज़ पर पीछे पड़े रहना किसी दोस्त के, वो आप लूज़ कर जाएंगे लोगों को। ये जो कुछ नहीं है इस वक्त मेरे पास या आपके पास या किसी के पास, वो हमें या तो लेना नहीं आया या हम उसको डिज़र्व अभी तक नहीं करते या हमें अभी तक उस बात की अकल नहीं आई है कि वो हमारे लिए है या नहीं। ये तीन चीज़ें ज़िंदगी में जब आप देख लेंगे तो मसाइल मसाइल रहते नहीं। और ये सारी बातें अप्लाइड हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये किसी वक्त कहीं भी बैठ के बता सकता हूँ।
2: जी सर, मैं इसी से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरी जॉब है, आई वर्क इन अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड हाई स्पीड हाई डेंजरस एनवायरनमेंट, और जब मैं वहां होता हूँ आई डोंट फील डेंजरस और मुझे सेफ्टी की कोई, बिकॉज एवरीथिंग जस्ट कम्स टू मी और मैं एफर्टलेस ईज से काम करता हूँ। लाइक आई गो आउट विद ट्रेनीज, आई शो देम हाउ टू डू एंड देयर लाइक हाउ एंड व्हाई आर यू सो काम। तो मैं उस बात को जब सोचता हूँ, जब ये ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक जब बंदों से डीलिंग की बात आती है
0: जी,
2: तब मैं होता हूँ
0: भाईजान। ये आपको बात को गौर से समझे, योर जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर लाइफ इज। जॉब आज ये है, कल कोई और हो सकती है। मसला हमारा ये, मैं आज ही किसी को बात बता भी रहा था, समझा भी रहा था कि हम लोग, उन्होंने मुझे बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन ने चीज़ों को इतना यूज़र फ्रेंडली बना लिया कि आप उनके ऐप पे जाएं, आप सिर्फ नाम लेते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ अवेलेबल कर दी जाएगी। तो मैं उनको बात समझा रहा था, मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो भी आपको चाहिए, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं। आपको इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आप एंड यूज़र आपके पास आएगा, जो इंसान है वो आपको चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़बान को, अपनी डीलिंग को यूजर फ्रेंडली होंगे तो चीज़ आपके पास आएगी। आपको बिजनेस चाहिए तो आप कितने यूजर फ्रेंडली हैं। आपको हर चीज को जितना आसान करेंगे लोगों के लिए, क्यों रब ने, और साइंस चेक करें, रब ने अपने अल्फाज में कहा तुम में से बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। आसानी पैदा करेंगे, जबान को आसान करेंगे कि उनको समझ आए। خواہش کو آسان کریں گے، ضرورت کو آسان کریں گے، موشن کو آسان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کنوینئنٹ ہوں گے کہ آپ سے لوگ آ کے بات کر سکیں، مسائل بیان کر سکیں، پریشانی بتا سکیں تو آپ حل بھی کر پائیں گے اور ایموشنز بھی ہوگا، لوگ آپ سے کنیکٹ بھی کر کے رہیں گے. اور رب کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ کیونکہ اس کی آسانی، اس آسانی پیدا کرنے والا بندہ، اس نے اپنی کتاب میں آسان ترین زبان سے اتنی مشکل چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ لوگ کنیکٹ کر سکیں، اس کی طرف آ سکیں. تو اس کے بندے بھی جو ہیں جتنا چیزوں کو آسان کریں گے بندے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، کیونکہ بندہ بندے کے ساتھ، آپ کی زبان میں بندہ بندے تو دارو ہے، ہم نے جو کر دیا وہ بندہ بندے تو مارو کر دیا نا ہم نے، کیونکہ حرکتیں ہم ایسی کرتے ہیں. تو جتنا آپ خود کو آسان کریں گے، اب یہ جتنا دیکھو بزنس میں، اب آپ ایک کام کرتے ہو، کرتے کرتے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے تو یو آر ڈوئنگ یور جاب ود این ایفرٹ لیس ایز، اٹس کمنگ نیچرلی ٹو یو، ایون پیپل آر آسکنگ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ. اتنی چیزیں جگل کر کے آپ بڑے کام رہ کے ساری چیزیں ڈیل کر لیتے ہو، تو یہ کمال قسم کی ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک آپ کے بارے میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ خود سوچو لائف میں آپ یہ نہیں کر پا رہے. تو مجھے زندگی میں یہ باتیں سمجھ آئیں، اچھے سیلز مین کا مقصد اچھا انسان بننا ہے اور کوئی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آپ بیچ سکیں، پروڈکٹ کو، آپ سروس کو، اپنی بات کو. اسی طرح لائر ہیں تو آپ نے جو بھی لاجک اور ریزن یوز کرتے ہیں لا کو، وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو کتنے ہی ڈاکٹروں کی صحتیں برباد ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو سارا علم جو ہے میڈیسن کا اور ہیومن اناٹمی کا، وہ بایولوجی کا، وہ سارے کا سارا یوز کریں اور خود کو ٹھیک کر کے دکھائیں سامنے، یا دوسروں پہ اپلائی کر کے دکھائیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمیں کنڈیشن کر دیا گیا کہ یہ نوکری کے لیے، یہ ایکچولی نوکری کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہے. نوکری اس میں 9 to 5 کا ایک کام ہے صرف، باقی گھنٹے جو ہیں 16 اس میں کیا کریں گے ہم؟ تو یہ سمجھنا ہے. جو چیز بھی آپ کو اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی اپنے جاب کے بارے میں بتا سکتے ہو، یا اچھی کمیونیکیشن ہے آپ اپنے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، یا پیپل دوز ہو ورک ود یو ان کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے، تو گھر میں وہ ریلیشن شپ نظر آنا چاہیے، ورنہ میرے کسی کام کے نہیں ہو آپ. اسی طرح آپ جو کام آرگنائزیشن میں کسی میں کام کرتے ہو، آپ کے اندر وہ ابلٹی نظر آنی چاہیے جو آپ کی پروفیشن نے آپ کو دی ہے. آپ فوجی ہو، آپ کا ڈسپلن نظر آنا چاہیے، آپ کی پنکچوئلٹی نظر آنی چاہیے، آپ جو ورڈ بولیں اس کو آپ کو کر کے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا. ورنہ جنہوں نے میرے ساتھ، جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، کیں، سیکھیں، اور ان تمام چیزوں میں وہ مجھ سے بہتر تھے، ہیلتھ میں وہ ہم سے بہتر تھے، آج ان کی ہیلتھ برباد ہے. فائنینسز میں وہ ہم سے بہتر تھے، آج ان کے فائنینسز ان کے قابو میں نہیں. جلدی رشتے کرنے میں، لوگوں کو بنانے میں، اور لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو کھچانے میں، اور بڑے بڑے کام کرنے میں وہ ہم سے آگے تھے، آج کوئی ان کا نہ نام لیتا ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ رکھتا ہے، نہ سیکھتا ہے. ہر وقت روتے پیٹتے پریشانی رہتے ہیں اور دکھی رہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کا مجھے کچھ حاصل نہیں ملا. یہ سب جو ہے نفسا نفسی، وہی ساری باتیں سیڈس جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. تو سیکھا کیا آپ نے؟ یہ سیکھا کہ آپ کی زندگی آپ کے بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کی جاب ہے. اسی طرح ایفرٹ لیس ایز سے آپ اپنا کام کر سکیں، آپ ایفرٹ لیس ایز سے اپنے فائنینسز ہینڈل کریں، ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ایموشنز ہینڈل کریں، ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ریلیشن شپس ہینڈل کریں. یہی سارے کام آپ بزنس میں کرتے ہو کہ نہیں جاب پہ؟ وہ گھر پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں کہ وہ سب کا سب جو آپ کی ذات میں وہاں ہے، یہاں آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس سے کچھ سیکھا اور اصل فائدہ آپ کا ابھی ہوا. جاب میں تنخواہ کے لیے آپ کام نہیں کرتے. ڈگری جو ہوتی ہے نا، کسی بڑے سیانے بندے نے کہا تھا، جب آپ کو ڈگری ملتی ہے یا وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اکثر وہ ڈگریز ہم جو لیتے ہیں جب جاب کرنے جاتے ہیں، وہ پوری کی پوری ڈگری اس جاب میں کام ہی کہیں نہیں آتی. پر ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال یا 14 سال تک آپ مسلسل اسکول گئے، آپ نے امتحان کا پریشر برداشت کیا، آپ نے وہاں پیئر پریشر برداشت کیا، آپ نے وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں، مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں ہوئی ہوں گی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سب برداشت کیں. یو سیلڈ تھرو، اور اس میں سے آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ڈگری ہے آپ کی، آپ نے اس میں سے بچ کے نکلے، اس میں سے کچھ آپ کو مار پڑی، کچھ آپ نے حاصل کیا، لیکن آپ کنسسٹنٹ رہے، اس بات پہ آپ کو نوکری دیتے ہیں. یہ ہے کوالٹی. ڈگری اس لیے لی تھی، اس لیے نہیں لی تھی کہ اس سے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، اس سے میں پیسے کماؤں گا. اور میں اپنے بچے کو اس دن بتا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے کے لیے تجھے ڈاکٹری میں نہیں ڈالا ہوا، ڈاکٹر تو میرے ارد گرد، اگر مجھ پہ چلے، میرے ارد گرد کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس کو میں چاہوں کہ میرا بچہ ویسا بنے، کوئی اس قابل نہیں. बिकॉज लाइफ में हम सारे फेल हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हूं। मैं कभी उसको डॉक्टरी की तरफ ना उनको लेके जाता, लेकिन डॉक्टर बनने से आपको उनको मैं बता रहा था बॉडी है क्या चीज़, आपको पता होनी चाहिए मेडिसिन कैसे काम करती है, देनी भी है या नहीं देनी, ये कैसे काम करती है। और उसके बाद आप अपना काम घर से भी शुरू कर सकते हैं, फीस लेके या उनको आपको इर्द गिर्द के इलाके से, ताकि आपको एक हुनर आ जाएगा जिसमें आप अपने पे अप्लाई करेंगे, अपनी फैमिली पे अप्लाई

0: मैं एक और जानवर को रिफाइंड बनाने के लिए क्यों पैसे ज़ाया करूँगा, या अपना टाइम और इमोशन में क्यों ज़ाया करूँगा? वो तो सेल थ्रू करते हैं, तुम कुछ भी पढ़ोगे सेल थ्रू करके निकल जाओगे। तो इंसान कैसे बनोगे? मुझको बेसिक इसके ऊपर ध्यान है मेरा, ना मुझे रिजल्ट चाहिए फर्स्ट आने के, ना मुझे ये चाहिए कि जी आपने पैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, आप जो बोले वो नज़र आना चाहिए, मुझको इंडिविजुअल क्रिएट करना है, और अगर आप वो नहीं बन सकते तो मेरा टाइम एफर्ट पैसा सब ये सब ज़ाया हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। उसकी जगह आप रेगुलर कोई भी काम करो, आई डोंट केयर, तो तुम सेटल भी हो जाओगे, काम भी कर लोगे, भाई दुनिया तुम्हें चालाकी भी सिखा देगी, तेज़ी भी सिखा देगी, और आखिर में तुम रोते हुए पीटते हुए परेशान होते हुए एक और बंदा इजाफा हो जाएगा, और मेरा सारा टाइम और एफर्ट और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी एक इंसान को जिसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ। तो जब तक हम अपनी
1: जी
0: औलादों को ये बातें नहीं बताएंगे, अपने रिश्तों में ये बातें नहीं बताएंगे, और दूसरी बात, और जब तक ये लोग अपने पे काम नहीं करेंगे, ये हमेशा डरे रहेंगे। अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम नहीं करता, कुछ दिनों के बाद दूसरा बंदा जो जो ये सब कर रहा है उसके लिए आप रिडंडेंट हो जाएंगे, वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा, और आपकी इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सेस, घबराहट बढ़ती रहेगी हमेशा। आप फिजिकली उनसे पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं फिजिकली इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, आप मेंटली पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं डम हूँ, या मेरी बात की कोई तुक्की नहीं बन रही, और या मुझे मेरे साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। ये बेहतरीन मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ, दोस्ती में हो, शादी में हो, पार्टनरशिप में हो, किसी चीज़ में भी हो, अगर आप साथ नहीं चले वो उस इंसान के जो आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहे, इंस्पायर नहीं कर रहे, या वो दूसरा बंदा आपको मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रहा। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मेरा कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जिसके साथ मेरा ताल्लुक है और वो मुझे इंस्पायर नहीं करता किसी ना किसी फील्ड में, और मैं भी, मुझे लोग कहते हैं कि आप इसमें इसमें इसमें इंस्पायर कर रहे हो, जब वो बोलते हैं तो जब वो उससे ऊपर नीचे करते हैं, फिर मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ कि अगर इंस्पायर कर रहा होता तो आप ये नहीं ये कर रहे होते, इस पे ध्यान दो, कार्रवाई पे ध्यान नहीं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहें जी आप बड़े इंस्पायरिंग हैं, आप बड़े लविंग हैं, आप बड़े केयरिंग हैं, हमने आपने हमारे लिए ये किया, आप बड़े नाइस हैं, उसमें बदले में दे क्या रहे हो? एटीट्यूड कम करो, बेवकूफ़ी कम करो, स्टुपिडिटी कम करो, इनसिक्योरिटीज़ कम करो, अपने काम पर ध्यान दो, जो कमिटमेंट की है वो पूरी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, कोई पैशन है परसू करो, क्रिएट करके कोई चीज़ दिखाओ, खुश होकर दिखाओ, ग्रेटफुल होकर दिखाओ, और ज्यादा ग्रेटफुल होके दिखाओ, ये काम है आपके, इससे लोग आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना, और इन सारे कामों में, ये रब से सीखा है मैंने, इन सारे कामों में क्या होगा, आप अपने इंडिविजुअल बनते जाएंगे, आपकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बेहतर इंसान बनेंगे, आपका फायदा होगा, मैं रहूं या ना रहूं आपके साथ या आपकी जिंदगी में, आपका फायदा हो जाएगा। तो रब भी यही चाहता है हमसे, क्योंकि वो गिविंग है, उसकी वापसी का उसको टेंशन नहीं है, वो खुद मिल जाएगा आपके लिए, वो चाहता है कि आपका सिस्टम एक बन जाए, आप अपने लिए किसी काबिल बनो, जब बन जाओगे तो फिर फैसला करना मेरे साथ रहना या मुझे छोड़ के जाना है। ये असल चीज़ है इंसान बनाने वाली, और जिस इंसान का इतना ज़र्फ नहीं होता, इतना कैरेक्टर नहीं होता, और यहाँ इंसान बार बार इंसान होने के नाते वो इतना नीच हो जाता है, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे ये किया मैंने तुम्हारे लिए, वो किया मैंने, वो किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए कर रहा था, साथ आपके लिए भी कर रहा था, मैंने अच्छा खाना बनाया, आप मेरे साथ उठते बैठते चलते हो, आप भी वो खाएं, मैंने एक चीज़ क्रिएट की, आप उसमें मेरी हेल्प करते हो, वो आपके लिए भी, आप उसको इंजॉय करें, सो आपने और मिलके आपने मेरे साथ क्रिएट किए, तो खुद इंजॉय करो, कंपनी है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, इंजॉय करो, डरो मत, घबराओ मत, हर वक्त परेशानी में ना रहो। तो ये जब तक इस तरह सोचेंगे नहीं हम, तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी मिरेकल्स नहीं हो सकते, और ना कभी लोग सोच सकते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं। आप ऐसे इसलिए कि आपने सोच का तरीका बदला, आपने ध्यान गिविंग पे रखा, आप लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे डर ख़त्म हुआ, आपको ये बात समझ आएगी कि ये सब कहीं और से आ रहा है, और जिसने अभी तक इतना दिया वो मुझे और भी देगा, मुझे सिर्फ उसको डिज़र्व करते रहना है, मुझे अपने पे काम करते रहना है, मुझे अपने दिल को, दिमाग को साफ रखना है, ताकि इसमें साफ चीज़ की जगह बन सके, साफ एहसास की जगह बन सके, क्लीन लोग, क्लीन सोचें, क्लीन काम की जगह बन सके, खुद ब खुद आते रहेंगे, और एक से बढ़कर एक आएगा, इसलिए टेंशन ख़त्म होगी, डर ख़त्म होगी, ये छोड़ देगा, इसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहा है, उसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको टाइम नहीं दिया तो ये कर देगा, इसको अगर अच्छा फील नहीं कराया तो वैसा कर देगा, ये सब आपके अपने मसाइल हैं, आप खुद करेंगे, हम आपको इन्वायरमेंट देंगे साथ साथ, हम भी उसमें पनप रहे होंगे साथ साथ, इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे, आप भी करेंगे, और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, हम आपके साथ नहीं भी रहे तब भी आप 1.25 लाख के, $1 million मैन है आप या वुमन है, ये है सोच

0: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: In Rabi al-Awwal, the

0: month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
1: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
2: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
3: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his ribcage and his lungs were punctured. And the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
5: Assalamu alaikum and a very, very warm welcome to all the listeners. I am Afsha Irfan and this is Hajra Khan. And we are here on our show, Family Matters on Inspire FM. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam. Afsha, hope you are doing good. Welcome, khush amadeed, ji ayanu, bhali kari aaye, pakhair raagle, ahlan wa sahlan. You can definitely call us or send a WhatsApp message on our hotline, that is 07779-481-822, or our direct line, that is 01582-481-822. Follow our Insta handle, which is Inspire FM Luton, or log on to our website, inspirefm.org, where you can listen and enjoy much more.
5: As you all know that हमारा जो topic चल रहा है इसमें ये है family matters, जिसमें हम के family के मुख्तलिफ मामलात को मुख्तलिफ चीज़ों को या जो हमारी एक family की ज़रूरियात होती हैं हम उनको लेकर discussion करते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा पिछला episode हुआ था family matters का था वो communication पे था, उस पर base करता था कि खानदान के दरमियान एक family के दरमियान कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है. ठीक है, जब तक बातचीत के साथ आप काम नहीं करेंगे या आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगी तब तक आपकी फैमिली का बॉन्ड नहीं बनता.
6: और ऐसा क्यों था कि हमने फैमिली मैटर्स शो शुरू करते के साथ ही हमने व्हाई डिड वी चूज कम्युनिकेशन एज आवर फर्स्ट मोस्ट टॉपिक, बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ एवरी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन. जब तक आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ अच्छा नहीं होगा, you are not going to move forward, चाहे वो आपका blood relation हो, चाहे वो आपकी distant family हो, चाहे वो आपके work colleagues हो, चाहे वो आपकी professional life हो, you are not going to go forward without good communication.
5: बिल्कुल बिल्कुल. एक family बनती ही तब है जब उसके दरमियान communication होती है. अच्छा, communication के साथ साथ, सिर्फ communication तो एक part आ जाता है, इसके साथ दूसरा part होता है responsibilities का. ठीक है, तो जिस तरह कम्युनिकेशन एक फैमिली की बुनियाद है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें मैटर करती है?
6: अच्छा, इसमें अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं अफशान जो हमें साथ साथ क्लियर करनी भी जरूरी हैं। सबसे पहले तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम वर्ड सुनते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लगता है कि बस वॉशिंग एंड क्लीनिंग एंड कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा ही माइंड में आता है कि नहीं?
5: बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम तो सारा वक्त यही करते रहते हैं।
6: लेकिन अगर आप इसका एक वाइडर एस्पेक्ट देखें तो एक फैमिली जो एक इंस्टीट्यूशन है उसमें जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत ब्रॉड चीज है, ठीक है? उसमें आपका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसके बाद आप हाउ डू यू रेज योर चिल्ड्रन, ठीक है, रेजिंग रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, उसके बाद आप अपने जितने भी घर में मेंबर्स रह रहे हैं उनको आप उनको मेंटल लोड ना दें, ठीक है, उनका मेंटल लोड शेड करने में, उनको सपोर्ट करने में उनकी हेल्प करें, तो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर सिर्फ खाना पकाना और सफाई करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता तो वो काम तो हम किसी को डेलीगेट करके भी कर सकते हैं, इज़न्ट इट?
5: हाँ बिल्कुल, वो तो हम आप ये कह लेना हम किसी को पे करके भी करवा सकते हैं, हम हाउस हेल्प भी रख सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ उसमें नहीं आती रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें बहुत कुछ आ जाता है अगर देखा जाए तो। तो हमारे घर में तो सबसे पहला सवाल आता है अच्छा खाना मैंने बनाया बर्तन कौन धोएगा।
6: ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे सामने जो आते हैं which actually start a debate, who is going to put the bins out, who is going to do the dishes, who is going to go do the cleaning, or if you have eaten and who is going to wind up after the dinner and things like that.
5: अच्छा आप क्या क्या ख्याल है अगर हम एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो एक नॉर्मल सा एस्पेक्ट है जिंदगी का या एक फैमिली का, हस्बैंड ज्यादा होते हैं मर्द, मेल मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो घर से बाहर काम करते हैं, और एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि औरतें काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, बच्चे पालती हैं, मियां बाहर से थका हुआ आता है तो आपका सबसे पहले होता है कि यार इसको ग्लास पानी पिला दो, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना।
6: एग्जैक्टली
5: है ना, तो आपका क्या ख्याल है क्या ये ऐसे ही होता है या इसमें भी इक्वलिटी आ जाती है, इसमें भी कुछ ना कुछ शेयर करना आ जाता है?
6: अच्छा जैसे आपने एक वर्ड पहले भी बोला इक्वालिटी, ठीक है, या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, उसमें हम एक बात क्लियर करते चलें कि इफ यू हैव 10 डिशेस टू डू तो 5 कर लेना और 5 अपने पार्टनर के लिए छोड़ देना, इट्स नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी इज कि जब आप ए टू जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली शेयर करें, इफ फॉर एग्जाम्पल समवन इज डूइंग अ 12 आवर शिफ्ट आउटसाइड द हाउस, तो जो घर पे है पार्टनर whether it is wife or husband, तो वो घर की responsibilities को meanwhile देख लें, और अगर वो part time job कर रहे हैं और their partner is doing full time job, तो वो घर और because they can the part time one can spend more time at home, तो वो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा घर के कामों में spend कर दें, contribute कर दें अपनी efforts, तो ताकि 12 hour shift करने वाले का burden थोड़ा सा कम हो जाए।
5: हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ज्यादातर औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो काम भी करके आए और फिर आके घर में आके खाने भी पकाए बर्तन भी, तो ये एक मैंने कहा ना एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि जी अगर ये जॉब कर रही है तो घर भी संभाल सकती है।
6: ओके सो यू नो व्हाट, ये जो हमारा एक साउथ एशियन कल्चर है वो क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, मेल मेंबर्स आर द हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर्स आर द ब्रेड विनर्स, मेल मेंबर्स आर द डिसीजन मेकर्स, तो उसमें होता यह है कि बिकॉज दे आर डूइंग द मेजर चंक, दे आर डूइंग द अर्निंग एंड दे आर डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दे आर डूइंग द कॉग्निटिव जॉब जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है आपका, तो एवरी अदर थिंग मे बी लाइक 80-90% of the tasks that don't involve brain as such, तो वो होते हैं औरतों के करने की। So this is generally what is happening in our Asian patriarchal society.
5: इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि मर्द अगर दिमागी काम करते हैं तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और औरतें अगर घर का काम करती हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती।
6: This is what is perceived of a woman's role.
5: Exactly.
6: आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करते हैं या 30 साल पहले की बात करते हैं तो ऐसा ही सोचा जाता था और ऐसा ही हो रहा था, बट द टाइम्स हैव इवॉल्वड, ओके, सो हैव द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, दे हैव ऑल्सो इवॉल्वड।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम, लेकिन देखें हाँ अगर आप उस तरह से देखें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के सारे कामों में अपनी अजवाज का हाथ बटाते थे, ठीक है। तो ये चीज जो है कि नहीं ये मर्द सिर्फ कमाने के लिए है और औरत सिर्फ बच्चे पालने घर चलाने के लिए है, ये उस वक्त भी नहीं था, लेकिन ये एक हमारा कल्चरल चीज बन गया, ठीक है।
6: तो आपने बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया कि हम इसको अभी वी आर ऑन द राइट पाथ टू डिस्कस दिस, कि आपकी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जितने भी, वो आपके रिलीजन से कितने एसोसिएट करते हैं, या आप उनको कितना रिलीजियसली, आप कल्चरल चीजों को कितना रिलीजन के साथ रिलेट कर पाते हैं, या आपके रिलीजियस और कल्चरल चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं।
5: बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आजकल तो जमाना वो आ गया है जहां पे अगर आप हर चीज में बात करते हैं ना कि ये भी हमारे इक्वल राइट्स हैं, तो ये भी हमारे इक्वल राइट्स हैं, अब फैमिलीज इक्वली की उसकी बुनियाद पे चलती हैं, तो उस सूरत में तो फिर आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मैं, मेरा काम है बस बच्चे पालना घर संभालना, ठीक है। आप एज अ वर्किंग वुमन भी हैं, आप वर्किंग वुमन भी हैं, आपकी जॉब भी है, इसके साथ साथ आप साइड बिजनेस भी करती हैं, आप एक तरह से वॉलंटियर्स भी करती हैं, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेके चल रही हैं, ठीक है, एक टोटली डिफरेंट उस पे, और हर चीज आपकी दूसरे से मुख्तलिफ है,
6: बिल्कुल
5: ठीक है ना। तो क्या आप ये समझती हैं कि इसमें आपके हस्बैंड का आपका सपोर्ट है कि आप इतना कुछ मैनेज कर रही हैं जबकि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है?
6: अगर अदरवाइज होता कि अगर मुझे हस्बैंड की सपोर्ट या हस्बैंड ने मेरे साथ इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर ना की भी होती, तो इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड पुट माई सेल्फ इन ऑल दीज रोल्स, जहां पर मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, जहां पर मैं वॉलंटियर वर्क भी दो तीन जगह पे कर रही हूँ, जहां पर मैं वी आर ऑल्सो रनिंग आर सोल सिस्टर्स ग्रुप, जिसके बारे में हम पहली एपिसोड में बात कर चुके थे, तो दैट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, अफशा आपको पता है कि उसमें भी हमारी कितनी प्लानिंग और कितनी, उसमें भी हम कितने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज आवर
5: मेन टूल
6: जिससे हम
5: बिल्कुल देखिए
6: जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं।
5: एग्जैक्टली, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या आप वर्कलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, अनडिस्क्राइब्ड होती हैं, ठीक है। अब अक्सर मैंने बहुत खूबसूरत फैमिलीज भी देखी हैं जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों ऑफिस से थके हुए वापस आते हैं, एक डिशेस संभालने लगता है, एक खाना बनाने लगता है, कभी हस्बैंड खाना बना रहा होता है, कभी वाइफ बना रही होती है, कभी एक बंदा समेट रहा होता है, कभी दूसरा समेट रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं जहां पर आप कह सकती हैं कि इक्वली शेयर्ड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन फिर कुछ टोटली ऑपोजिट भी हैं। मेरे सामने एक है, एक ऐसी भी मतलब एक फैमिली आई कि आई वॉज शॉक्ड टू सी कि हस्बैंड केम होम, वो आया और सोफे पे बैठ गया और वाइफ ने आके उसके जूते भी उतारे और उसको खाना भी प्लेट में डाल के उसके सामने टेबल लगा के दिया। सो आई वाज शॉक्ड, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा यार तुम बिजनेस करती हो, शी रन्स अ केक बिजनेस, सो यस इट वाज अ हार्ड थिंग, इट्स नीड्स डेडिकेशन एंड टाइम एंड एफर्ट, और फिर बच्चे भी संभालना, एंड दैट गर्ल इज सो अमेजिंग, क्योंकि आप यकीन करो उसने अपना घर YouTube से वीडियो देख के खुद बनाया है, किचन उसने खुद लगाया, टाइलिंग उसने खुद की, अपनी बहुत कुछ उसने खुद YouTube से देख के किया,
6: दैट इज रियली कमेंडेबल।
5: हाँ, लेकिन मुझे उनको थोड़ा सा वो था कि मैं उसको उनके हस्बैंड को मैंने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इफ शी इज डूइंग सो मच इस घर के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए, तो डू यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर द responsibilities.
6: Yeah, so if you see the husband is going a step ahead, he's not even sharing responsibilities, he's like asking him to be spoon-fed.
5: Exactly. तो ऐसे भी होते हैं, मतलब बास फैमिलीज में ये, मतलब ये एक रोल होता है कि because he is earning outside, he doesn't need to do anything inside.
6: This is a very wrong concept. Even के patriarchal society में भी if जैसे हमने कहा कि एशिया की हमारी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जहाँ पर मेल इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर, तो उसमें भी आप इफ यू आर लर्नड इनफ, इफ यू आर एजुकेटेड इनफ, तो फिर आपको यू मस्ट नो कि आपकी भी कोई घर के अराउंड जिम्मेदारी आती है. और जैसे मैंने कहा कि फैमिलीज इवॉल्व हो रही हैं, कल्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो आई कैन सी मोर हस्बैंड्स, मोर मैन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड चोर्स, एंड इट इज नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन. ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहें कि जी ही इज हेल्पिंग विद हिज वाइफ और इट्स अ शेम ऑन हिम.
5: हल्ले लग गया.
6: एग्जैक्टली. It should be relatable. जहां पर उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये तो he is in total control of his wife and he shouldn't be doing it.
5: Exactly.
6: तो आप तो वो typical words निकाल के ला रही हैं कि जो लोगों ने अपने घर में सुने होंगे definitely.
7: देखो ये
6: which is a shame.
7: जैसे exactly. मतलब बहुत सारे मैं actually चूंकि उर्दू बैकग्राउंड है और उर्दू बोलते भी हैं, समझते भी हैं, और ये सारे वो अल्फाज हैं जो अक्सर हमारे माशरे में दोहराए जाते हैं. जहां पर किसी भी मेल मेंबर ने स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी में कपड़े बाहर तार पे डाल दिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन में डाल दिए, डिशेज उठा के डिश वॉशर में लगा दी, या कोई बर्तन धो दिया, सबसे पहला जुमला जो अक्सर बोला जाता है ये तो जन मुरीद है, ये तो बीवी के पांव थल्ले लगा हुआ है. ठीक है. They do not understand that sharing the responsibilities of the house doesn't make you that.
6: Exactly, बिल्कुल. और आप I was still growing up, जो एक छोटा सा वाक्या था मेरे बिल्कुल सामने आया और वो मेरे जहन से कभी जाता ही नहीं है. We have a very good family, जो कि हमारी family friends हैं, और उन्होंने अपने बेटे को जो कि few months old था, तो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, उठा के और उसको जैसे बच्चों को आप झूला देते हैं ताकि वो सो जाए या काम हो जाए. तो ऑन दैट स्पॉट एक मेरे बहुत ही करीबी थे, बुजुर्ग थे जो वहां पर खड़े हुए थे, और उन्होंने उसको उनको बहुत एक ना तस्दीक से देखा कि लुक ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, व्हाई इज ही पिकिंग अप हिज चाइल्ड एंड यू नो टेकिंग केयर ऑफ
5: रॉकिंग और उसको सुला रहा है.
6: तो It was such a shock at that time. और अभी भी जब मैं उस incident को, उस बात को याद करती हूँ तो मुझे, मेरे जहन में ये बात आती है कि since we are coming from such a culture basically, और because I belong to a Pathan family, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है कि these roles are specifically dedicated to women. तो मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड या स्पेसिफिकली हस्बैंड्स, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एज सच, के डायरेक्टली टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कि वो उठा के सुला रहे हैं या उनको बॉटल से फीड करा रहे हैं या मे बी उनका डायपर जो है वो चेंज कर रहे हैं. तो आप अगर इस एक छोटा सा काम भी कर देते हैं अपनी वाइफ के साथ हेल्प करने के लिए, तो सोचें उसको कितना बड़ा रिलीफ है.
7: बिल्कुल. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. आप एशियन कल्चर की बात करें, आप यूरोप के कल्चर की बात करें, आप किसी भी उसकी बात करें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पर होती है. ठीक है. मैं मतलब अगर एशियन में ये होता है तो मैंने यूरोप के कल्चर में भी कुछ इस किस्म की कहानियां देखी हैं, यूरोपियन फैमिलीज में भी देखी हैं कुछ ऐसी कि वो हस्बैंड इज जस्ट अ हस्बैंड, सो ही डजंट नो के घर में क्या हो रहा है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे. बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. सबसे पहले तो शौहर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. लेकिन माँ बनना, बीवी बनना, ठीक है, इस पे दोहरी जिम्मेदारी होती है. आपको घर की एक एक चीज को याद रखना पड़ता है और बादों का तो आपको बाहर की चीजों को भी याद रखना पड़ता है.
6: Exactly.
7: और हमारा कल्चर इसमें है जिसमें हमें पूरे खानदान को याद रखना पड़ता है.
6: बिल्कुल ऐसे ही है.
7: ठीक है.
6: क्योंकि आप जब आप देखें कि इफ यू हैव अ चाइल्ड, हम एक ही बच्चे की बात करते हैं, जब हमें एक बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है, इट्स अ 24/7 365 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ वुमेन्स शोल्डर्स, के वो उसने बच्चे की जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, उसकी پراپر ایک رسپانسبلٹی لینی ہے, اس کی اسکول جانا, ان کے یونیفارم, ان کا کھانا پینا, ان کے اپوائنٹمنٹ, سب کو یاد رکھنا ہے.
7: بالکل.
6: تو اس میں مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ اور فنی سی بھی بات یاد آ گئی کہ جب ہماری طرف خواتین جب بھی بنتی ہیں, نیو مدرز ہوتی ہیں, تو وہ بالکل آپ ان کو دیکھیں تو یو کین اسپاٹ دیم فرام ڈسٹینس, کیونکہ وہ دے آر لائک
7: زومبیز.
6: ایگزیکٹلی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ورڈ,
7: می ٹو, بٹ لیکن انفارچونیٹلی بیکاز دے آر سو اوورویلمڈ وتھ ایوری تھنگ,
6: دے آر سو اوورویلمڈ اینڈ دا پیپل اراؤنڈ دیم دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو, یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ دا چائلڈ ایز مچ ایز یو ہیو ٹو
7: سپورٹ دا
6: مدر. Okay,
7: exactly.
6: So mother needs to be supported primarily. Child خود ہی سپورٹ ہو جائے گا. آپ مدر کو سپورٹ کریں, اس کو آپ ٹیک کیئر آف ہر, ٹھیک ہے, اس کو آپ کوئی گفٹ دیں, کوئی آپ اس کو پریز کریں دیٹ یو ور تھرو سچ اے ڈیفیکلٹ ٹائم یو ہیو بیکم اے مدر. اور اس پہ ایک بڑا ایک فنی سی ایک چیز جو آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اپنا خیال رکھو, تم ماں بنی ہو پاگل نہیں.
7: That's true.
6: Exactly. مطلب
7: لیکن نہیں,
6: یہ سوسائٹی ہماری ہمیں اتنا زیادہ وہ اوور ویلم بھی کر دیتی ہے, اور ہمیں اس اتنے پیارے رشتے کو ابزارب کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ کرنے کا, انجوائے کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیتی. اور ہمارے اوپر انہوں نے ایک ذمہ داریوں کا ایک لسٹ ہوتی ہے دیٹ وی کم اکراس وین وی آر نیو مدرس, کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس, دیر از اے لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس.
7: ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کچھ کلچرس میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کچھ اس میں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جس طرح وین مائی سن واز بورن, ماشاء اللہ, تو آئی واز اسٹیئنگ ود مائی مدر ان لا اینڈ شی از سچ اے سویٹ ہارٹ کہ وہ تو انہوں نے مجھے تو صبح ناشتے میں بھی دو دیسی گھی کے پراٹھے کھلائے تھے, اور دوپہر کو بھی,
6: ماشاءاللہ. سو شی واز ٹیکنگ کیئر آف یور ہیلتھ.
7: ہاں, تو اس وجہ سے میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ریسپانسبلٹیز آپ کی شیئر ہو جاتی ہے. جیسے میں تھک گئی تو میں نے بچے کو مطلب اپنی مدر ان لا کے حوالے کر دیا کہ امی آپ دیکھیں میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لے لوں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ فیملی کلچرز میں جب ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے یا جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, یس یو گیٹ بیٹر آف ریلیکسیشن, لیکن پھر ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ریسپانسبلٹیز آپ کی, چونکہ یو آر اے مدر, اے نیو مدر, اینڈ یو آر آلسو بہو, ٹھیک ہے, ڈاٹر ان لا, اینڈ یو آر آلسو اے وائف, ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی میں آپ کی تین ذمہ داریاں بن جاتی ہیں.
6: Exactly.
7: یہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے, اور بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اور اس وقت میرے خیال میں آلسو ریسپانسبلٹی کمز آن ہسبینڈز, ٹھیک ہے, ان کو بھی بہت کچھ اس میں میرے خیال میں ریئلائز کرنا چاہیے کہ میری بیوی ہے جو ایک مطلب ماں بھی بن گئی ہے, جو بہو بھی ہے, جو میری بیوی بھی ہے. تو اگر آپ کا پارٹنر, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا سپاؤس اس وقت آپ کا ساتھ دیتا ہے, آپ کے آرام کا خیال رکھتا ہے, بے جا بغیر ریزنز کے جو آپ کے اوپر ریسپانسبلٹیز ڈالی گئی ہوتی ہیں, اگر وہ ان کو تھوڑا سا فرملی یا وہ کر لے کہ نہیں میں ابھی فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو دس ہیلپس.
6: ایگزیکٹلی, اٹ ڈز شیئر کر لیں ریسپانسبلٹیز. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ if I talk about Pakistan, because I am coming from Pakistan, so I can relate, I can understand, and I have gone through this thing, I have experienced and I have observed that nobody acknowledges that postpartum depression that you go through.
7: Exactly.
6: It's a very, very important
7: thing.
6: Nobody even talks about it, nobody yes. acknowledges it, okay, even the most educated husbands won't talk about it.
7: Wo you are absolutely right. Aur khas taur pe hum logon ke liye jab hum pardesh mein hote hain aur hum bilkul akele hote hain,
6: bilkul,
7: theek hai, aur hame sab kuch manage karna pad raha hota hai, تو اس وقت واقعی اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی ریسپانسبلٹیز شیئر کر لیتا ہے تو آپ کو بہت سپورٹ مل جاتی ہے. اور آپ ایک ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی اس کے لیے نا آپ کو بہت لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کبھی کبھی یہ جملہ بھی بول دے نا کہ نہیں فکر نہ کرو میں ہوں,
6: آئی ایم بیکنگ یو,
7: ہاں, اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, میں ہوں, میں
6: یہاں ہوں, سپورٹ یو,
7: दिस वन सेंटेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस.
6: इट डज नो डाउट.
7: ये आपकी इमोशनल सपोर्ट होती है. तो आपकी इमोशनल सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए आपके स्पाउस का कभी कभी छोटा सा जुमला जो है ना वो बहुत काम आता है. अच्छा, ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है, और जैसा मैं कह रही हूँ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिटन डिबेट नहीं है, कुछ भी नहीं.
6: अगेन
7: अंडरस्टैंडिंग है.
6: एग्जैक्टली, इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड,
7: एग्जैक्टली
6: यू आर गोइंग टू डिवाइड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग योरसेल्फ्स.
7: हाँ,
6: वेरी नाइसली.
7: तो इसमें ये होता है. अच्छा, वो होता है, मुझे हम एक घर में गए डिनर पे, तो जिस वक्त हम पहुंचे तो उस वक्त मतलब दे वर स्टिल लाइक इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स ना, एंड इट वाज सच अ स्वीट गेस्चर कि जब वो हम लोगों को वेलकम करके वो अंदर वो लाउंज में हम बैठने लगे, तो हस्बैंड वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ही गोज टू द वाइफ, तो उसको कहता है कि तुम दो मिनट बैठ जाओ, मैं अंदर जाके ना चूल्हा देख वो दम देख के तो चूल्हा बंद कर दूंगा ना. और वो द वाइफ सैट डाउन एट दैट एंड इट वाज सच अ स्वीट गेस्चर कि उसने उसको कहा कि यार तुम इनके साथ बैठ के बात करो, आई टेक केयर ऑफ दिस किचन. ठीक है, दिस आई थिंक दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आपका हस्बैंड आपको इतनी वैल्यू दे रहा है कि जब उसने वेलकम कर लिया है, मिल लिया है, तो वो आपको कह रहा है बाप की बारी है, आप इनके साथ बैठ जाओ, थोड़ी टाइम लगा लो, कोई बात नहीं, जो चावल वगैरह बिरयानी दम पे रखी है वो मैं देख लूंगा.
6: टेक अ ब्रीदर, एंजॉय विद द गेस्ट्स बिकॉज यू हैव इनवाइटेड देम, हैव अ गुड टाइम,
7: हैव अ गुड टाइम,
6: गुड चैट, एंड यस, व्हाई नॉट, लाइक द वुमन डिजर्व्स इट, अ वुमन डिजर्व्स इट.
7: अच्छा, आपका क्या ख्याल है, जो ये रोल होता है, जो ये करेक्टर होता है मेल डोमिनेंस का, ठीक है, इसके पीछे क्या हमारी एज अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बेटे जो हम अपने हस्बैंड से चाहते हैं.
6: अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, टुडेज टॉपिक, रेजिंग रिस्पॉन्सिबल किड्स. एंड इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन टू द रेडियो इंस्पायर एफ एम 105.1 07-779-481-822, प्लीज ड्रॉप योर मैसेजेस और कॉल टू गिव योर फीडबैक, एंड वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू शॉर्टली. वी आर गोइंग टू इंक्लूड योर फीडबैक, योर क्वेश्चन इन द अपकमिंग प्रोग्राम्स इंशाल्लाह. तो अफशा, जैसे आपने बात की रेजिंग रिस्पॉन्सिबल किड्स, डेफिनेटली इट प्लेज अ ह्यूज पार्ट. जैसे जिन कल्चर से या जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम वी पुट मोर प्रेशर ऑन गर्ल्स देन ऑन बॉयज. तो इफ यू आर रेजिंग अ गर्ल एंड अ बॉय साइमल्टेनियसली इन योर हाउस, तो देर इज गोइंग टू बी मोर प्रेशर ऑन गर्ल देन ऑन द बॉय, कि शी हैज टू टेक केयर ऑफ द all the like
7: duties
6: as she's growing up she has to take care of the responsibilities
7: like safai, khana, kapde, har cheez, matlab wo bachchi ki zimmedari hai, wo bete ki nahi hai.
6: Bilkul. So which is debatable.
7: And so our program continues and we will be back after a short break.
8: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
9: Inspire FM.
8: Inspire 105.
10: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
11: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
12: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
11: We can also offer guaranteed rental income.
12: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
13: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Welcome back to Family Matters. Today's topic, as you know, is roles and responsibilities in the home. Before the break, we were talking about why is a girl expected to do chores, not a boy?
2: Basically, responsibilities equivalent. Okay, we were talking about that every house responsibilities jab इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? अभी हम एशियन कल्चर की बात करते हैं, इवन के बाद यूरोप के कल्चर में भी होता है कि बाज़ औक़ात बेटे को जो स्पेस दी जाती है या बेटे के उस पर किया जाता है उसमें उस तरह से बेटियों को नहीं किया जाता। हमारे माशरे में बचपन से एक बच्ची के जहन में डाला जाता है तुम्हारा काम है घर संभालो, कपड़े धो, खाना धो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, बच्चे पालो, ठीक है। और एक एक बेटे को पाला जाता है बिल्कुल एज अ प्रिंस, एज अ किंग, कि बस आके बैठ जाओ, तुम्हें तैयार,
3: अच्छा pampered so much।
2: और दूसरा होता क्या है कि जैसे ही बेटा घर में एंटर होता है माया वाला लगाती है बेटी को, पानी लाओ भाई आया है, खाना गर्म करके दो भाई आया है। वी आर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग setting an example ki you are the man and you have no responsibilities when you come from outside. You just sit, tumhari biwi tumhare samne lakar ek tray rakhegi jisme tumne khana khana hoga,
3: that's it, and you the wife or
2: hum badshah paal rahe hain.
1: Exactly, they are the wife basically in that case is going to have all the cognitive burden on her mind to manage every household chore, manage children, their schools, everything. And when the husband is back from the work, so that's it. That's all for the day for them.
2: बिल्कुल.
1: So, are you in favor of this?
2: No. आप को मैं अपने घर की बात बताऊं तो my son is 2.5 years older than my daughter. So when he was 3, तो मैंने उस वक्त से अपने बच्चे को, अपने बेटे को स्पेशली छोटी छोटी चीजों में लगाती थी। ये चीज ले आओ, वो चीज ले आओ, बहना के लिए ये चीज रख दो, ये यहाँ पे कर लो, ये वहां पे कर लो। और आपको मैं बताऊ, मैंने मतलब बचपन से उनको उसको काम पे लगाया, ठीक है, कुछ ना कुछ उसे मैं करवाती रहती थी, कपड़े समेटवा लो, चीजें हटा लो, एंड so still they have their own responsibilities at home. अब यकीन करें मेरा बेटा जितनी अच्छी चाय बनाता है ना शाम की, उतनी मेरी बेटी भी नहीं बना सकती बाज़ औक़ात।
3: तो अभी तो आके पीनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी चाय बना रहे हैं।
2: यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आए मेरे घर में मेरे बेटे के हाथ की चाय पिए।
1: और अगर आप चाय पी रहे हैं तो 07779481822 पे जरूर हमें मैसेज ड्रॉप करें। दिस इज आवर हॉटलाइन और इंस्पायर FM .org पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं टू सी ऑल द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स एंड द न्यू शोज एंड देयर इज मच मोर। यस, कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग, व्हेन वी रिसीव अ डॉटर इन लॉ, ओके, सो मोस्ट ऑफ द एशियन फैमिलीज मैरी देयर सन्स जस्ट टू ब्रिंग अ डॉटर इन लॉ, ताकि उनके घर के काम का बर्डन शेयर हो जाए। एंड इन मोस्ट केसेस वो अगर कोई हाउस हेल्प पहले आ रही होती है तो उसको भी निकाल दिया जाता है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि देन द डॉटर इन लॉ इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड।
2: बेसिकली मैंने कहा ना कल्चरल थिंग है ये, आपके उससे मैच नहीं करती, आपके रिलीजन से भी नहीं करती,
3: नॉट एट ऑल,
2: और एक ह्यूमैनिटी से भी नहीं करती,
3: नॉट एग्जैक्टली।
2: अगर आप एक बेसिक सी चीज देखें तो देखें आप इस्लाम में उसमें देखें तो बहू का या बीवी का मकाम बहुत ऊंचा है, ठीक है, और नेचुरली अल्लाह ताला ने भी कुछ हुदूद मुकर्रर की हुई है, अल्लाह ताला ने भी कुछ की हुई, और ये हर जगह पे, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, इस्लाम में नहीं है ये, बाहर अगर आप वैसे ओवरऑल हर रिलीजन देखें तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज डिवाइडेड है, ठीक है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं है। आप जिस तरह से ये हमारा एक कल्चर बन गया है, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि बास औकात बच्चियां बहुत टफ सिचुएशन से गुजरती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम कर क्या रहे हैं, हम आ कहाँ गए हैं.
1: इन दिस कंटेम्पररी सिनेरियो द गर्ल्स आर एजुकेटेड. They are coming from an educated background. They are educated. They are doing their post graduations. They are doing their other career
2: masters, PhD, mashallah, the girls
1: career oriented degrees, and they are married to a pampered child.
2: सही बात है.
1: Exactly. So to just move around him and you know just being a puppet. So
2: मेरे ख्याल में ये responsibility हम माओं की है कि जब हम अपने बेटों को बड़ा करें तो उनको अगर बादशाह बनाना है, हम लोगों ने एक किंग की तरह उनको बनाना है, एक प्रिंस की तरह हमने उनको बड़ा करना है, ठीक है, तो हमें उनको वो क्वालिटीज भी देनी चाहिए जो एक किंग या एक प्रिंस की होती है. उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठ के हुक्म चलाओ, उसमें ये होता है कि वो ड्यूटीज और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब कुछ शेयर भी करें.
1: इफ यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड और यू आर ऑन टॉप ऑफ समथिंग, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज on your shoulders than a common person.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: The more power, the more responsibility.
1: Exactly.
2: ठीक है ना. अब अगर आप personally, मैं चूंकि मैंने अपने बेटे को honestly बहुत कुछ सिखाया भी है और बताया भी है, and he alhamdulillah he is good with it. मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बेटे को ये सोच कर नहीं करें कि इसकी बीवी आएगी तो वो इसके सारे काम करेगी, आप अपने बेटे को इस तरह ट्रेन करें कि जब वो उसकी बीवी आए तो दोनों मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, क्योंकि अ हैप्पी हाउस इज वेयर द हैप्पी वाइफ इज.
1: एग्जैक्टली. क्योंकि शी इज द पर्सन स्पेंडिंग इन मोस्ट केसेस स्पेंडिंग
2: सारी जिंदगी गुजारनी है भाई उसने,
1: मोस्ट ऑफ द time in the house, and then it's not that you are just earning money and contributing financially and things like that, you have to share the daily dose of burdens as well.
2: Bilkul.
1: Aapke daily ek quota hota hai burden ka, daily chores ka quota hota hai, wo bhi aapne share karna hota hai.
2: Ab hota ye baas aukaat ke husbands pura hafta busy rehte hain. Bilkul. ठीक है, दे गो टू ऑफिस, दे कम होम लेट, यस, दे डू नॉट हैव द टाइम कि वो एक एक चीज को डिस्कस करें या एक एक चीज में काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. अगर आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन आप अपनी फैमिली को जरूर दें. आप उनकी छोटी मोटी चीजों में जरूर शेयर करें. अगर आप घर पे हैं, हफ्ते का एक दिन है, आप अपनी फैमिली का टाइम गुजारते हैं, तो आप अपने हाथ से कुछ छोटा मोटा बना के अपनी बीवी को दे सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि बेटा मैं सिर्फ कमाता नहीं हूँ, मैं जो कमाता हूँ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारी वजह से करता हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों का एक एहसास है.
1: अगेन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन आई वुड सजेस्ट सच हाउसवाइव्स who are raising children, who are just bound to their houses, मैं उनसे ये कहूंगी कि अपने लिए कोई आप एक्टिविटी, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आपको रिलैक्स करे, जो आपका एक मी टाइम हो, जो आप जिसको आप करने में रिलैक्सेशन फील करें, जो आपको कैथारसिस करने में हेल्प करे. तो डू कीप अ हॉबी. इसमें आपको सोचने का मौका मिलेगा, इसमें आपको अपनी गलती को बेहतर करने का या दूसरे
2: सीखने का अमल होता है.
1: सीखने का अमल होता है. एग्जैक्टली. जब हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आर माइंड इज स्टिल यू नो गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड ऑन दैट डे, ऑन द प्रीवियस डे. और उसमें जैसे आई निट. ओके. सो निटिंग इज बेसिकली अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम फॉर मी, लेकिन उसके साथ साथ my mind is going through all the things that have happened during the day or the previous day or during the week. aur usme mujhe ye thoda sa apne aap ko bhi judge karne ka mauka milta hai, where at what point I was wrong or at what point I should have given some space to my husband or my child. तो उसमें आपको जो है ना next day you are another person. Next day you are fresh, you are a new person. और क्योंकि आप you had some me time. Okay, you had some catharsis.
2: और इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. You can find anything inside the house.
1: Yeah, there is so much on YouTube now. Mm-hmm. Just find what you like. If you like painting, if you like glass painting, if you like to make sketches, if you are good at knitting, if you are good at crocheting, take that. Spend some little amount of money on that and make a corner of your home as your me space.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: अच्छा चले अब तो हम बात करें ना जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अब बात करते हैं एक सिंगल पेरेंट की. अब ये बताएं कि अगर एक सिंगल पेरेंट है तो वो कैसे मैनेज करे. सारी बात है उसके पास उसके ऊपर दो फरीकों की जिम्मेदारी है. दो ऐसे उसको दो कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ रहे हैं एज अ मदर एंड एज अ फादर.
1: So we are always regarding single parents as superheroes. Okay?
2: हाँ,
1: but it's there is no shame in asking for help even if you are the superhero. Okay, there is no shame in asking for some support, some help from your parents, from
2: siblings,
1: your siblings, from your friends, from your colleagues, from your neighbors. Anyone that you can trust in that particular scenario, you can ask help from. Okay,
2: mm-hmm.
1: And you, your child, if they are not of age, they are not responsible of carrying your mental burden on themselves. Okay, so you cannot ask your child all the time that I'm the only person for you. I'm taking care of all the responsibilities. You can't make him or her realize this thing every time. So you have to manage your burden all by yourself. Your child can be your support, but not 100% all the time.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं. और मेरे ख्याल है अगर एक single parent भी है ठीक है आपके ऊपर responsibilities भी बहुत ज्यादा होती हैं आपको हर चीज manage भी करनी उसमें आप अपने बहन भाइयों से अपने माँ बाप से अपने उससे जरूर मदद मांगे क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आपके अपनी फैमिली के लिए. और जब बहुत परेशानियां हो जाती हैं बहुत जिंदगी है ना स्ट्रगल है एंड आई नो आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस दे ऑल हर्डल्स उसमें होती हैं लेकिन बेहतर हाँ तो लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा बहुत दूसरे पे करना चाहिए. देयर इज नो शेम टू आस्क फॉर हेल्प कभी भी नहीं होता ठीक है. इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि यार लोग क्या सोचेंगे. लोगों का क्या है लोग तो बिरयानी खाकर भी सोचते हैं और सादा चावल खाकर भी सोचते हैं आपके बारे में. सो इट डज नॉट मैटर एनीथिंग यू मैटर योर लाइफ मैटर.
1: आप क्या सोचते हैं वो पर्टिकुलर सिनेरियो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है आपके बच्चों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है. इज इट गुड इज इट पॉजिटिव इज इट नेगेटिव. यू हैव टू थिंक अबाउट कीपिंग योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी योर चिल्ड्रन एज अ प्रायोरिटी नॉट योर कम्युनिटी एज अ प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटाइज करें. आस्क फॉर सपोर्ट आस्क फॉर हेल्प. टेल योर मदर दैट आई नीड योर हेल्प टूडे. टेल your sister or brother that you need help for that particular day.
2: Communication जो होती है यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आप उनके साथ communication करेंगे तो आपको support मिल जाएगी. अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे हम लोग हैं जिनके यहाँ पे कोई family नहीं है ठीक है. फिर हमारे लिए हमारी friends और हमारी chosen family आ जाती है जिससे हम हेल्प कर देते हैं मांग लेते हैं हम उनसे सपोर्ट मांग लेते हैं. और मेरे ख्याल में अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है और आप आपके अच्छी फ्रेंड्स हैं आपकी चोजन फैमिली आप उन पे ट्रस्ट करते हैं तो यस देयर इज नो शेम टू आस्क फॉर हेल्प.
1: एंड इवन अक्षा आई वुड से कि इमोशनल सपोर्ट भी यू कैन आस्क फ्रॉम देम बिकॉज यू आर इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके योर मॉम और योर फादर बैक इन पाकिस्तान दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो यू आर इन और द शूज यू आर वॉकिंग इन. ओके, योर नेबर और योर वर्क कोलीग दे माइट बी मोर दे माइट अवेयर ऑफ योर सिचुएशन देन योर सिबलिंग सिटिंग बैक इन पाकिस्तान और योर बेस्ट कजन दैट इज इन पाकिस्तान. सो asking for help, asking for any advice, asking for any support is not a matter of shame at all.
2: नहीं. दूसरी बात ये होती है कि हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके घर में जो कुछ हो रहा होता है ना वो आपको पता होता है.
1: mm-hmm.
2: वो थर्ड पर्सन को नहीं पता होता. आप जो बताते हैं वो सुनते हैं.
1: mm-hmm.
2: और वो उस हिसाब से आपको मशवरा देते हैं.
1: mm-hmm.
2: लेकिन जो आपको देख रहा होता है, ये जो आपके साथ होता है, वो ज्यादा बेहतर असेस कर सकता है. इसीलिए कहते हैं, आमतौर पे यही कहा जाता है कि जब आपकी शादी हो जाए तो अपने घर के मामलात अपने तक ही रखो. जितना आप लोगों से राय लेते हैं, जितना आप एक्सटेंड करते हैं, जो स्पेशली जो दूर या बैक होम होते हैं, दे असेस एवरीथिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग. दे डू नॉट लिव हियर, दे डू नॉट सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, सो दे हैव नो आइडिया हाउ टू गिव यू
1: एडवाइस. द स्ट्रगल्स यू आर गोइंग थ्रू, दे कांट एक्चुअली, बिकॉज स्टेइंग बैक इन लाइक Bangladesh, India or Pakistan is totally different when you move here or when you are an immigrant family. Okay, you aapka ekdam se you move to a 180 degree culture
2: twist, yeah,
1: aur ek aisa scenario aapke paas create ho jata hai jisko aapne totally khud se handle karna hai. aapne apne ghar ko bhi khud se handle karna hai, aapne bahar ki bhi फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है, आपने डिसीजंस भी खुद से लेने हैं और यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल. कोई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दे आर नॉट हेयर टू टेक योर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड ब्रिंग दम बैक. यू हैव टू मैनेज इट ऑल बाई योर सेल्फ.
2: अच्छा, अब हम आते हैं उन एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ जिसमें के नानियां दादियां साथ रहती है, ज्वाइंट फैमिली होती है. चले पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि चले अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो बहुत सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं. अब जैसे मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, शी इज वेरी गुड कुक. ठीक है, तो शी टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किचन ऑल द टाइम. तो हमें वो नहीं होता कि यार अच्छा मेहमान आ रहे हैं या कुछ होते हैं, तो वो खुद ही सारा हैंडल कर लेती हैं. शी इज गुड कुक, शी इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, अगर मैं वैसे उसमें बात करूं तो. अब बाकी रह जाती हैं माशाल्लाह से हम तीन. ठीक है, तो हम इस अपने अपने काम डिवाइड कर लेते हैं. मैं ये कर लूं, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो. तो मेरे ख्याल में अगर आप एक्सटेंडेड फैमिलीज भी रहते हैं, और अच्छा एक और चीज भी होती है, और वो की चीज क्या होती है कि जब एक न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें अनरिटन अनकंडीशनल या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है. लेकिन मेरे ख्याल में जब आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं जहां आपके साथ आपके इन लॉज भी रहते हैं, जिसमें आपके सिस्टर इन लॉज हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉज हो सकते हैं, आपके और लोग भी रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे जब आप आए तो आप लोग रिटन या कम्युनिकेशन के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लें.
1: दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू पॉइंट आउट अफशान, दैट इफ द ग्रैंड मदर बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द हाउस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी इज यू नो बेबी सिटिंग योर चाइल्ड फॉर 2 to 3 hours व्हाइल यू आर अवे, या फॉर द होल टाइम 9 to 5 व्हाइल यू आर अवे, तो इसमें क्या होता है कि इज शी द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द चाइल्ड, इज शी गोइंग टू मेक डिसीजंस फॉर द चाइल्ड एज वेल, और आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू स्लीप एट 8 or 9.
2: मेरे ख्याल में दिस डिपेंड्स, बट आई थिंक दिस इज द पेरेंट्स राइट. आपने देखिए, आपको लड़के कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है. यू मेक योर रूल्स, यू communicate and you tell your family members, these are my rules, I am not going to compromise on them.
1: Again, it's how good you communicate and how understanding the whole family is.
2: देखिए, आप अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है इस चीज की. ठीक है, कि आप लड़ने की जरूरत नहीं है. कब याद रखिए कि घर में झगड़ा फसाद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? अगर आपका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, आपको कोई भी चीज अच्छी है बुरी है शोर मचाने की जरूरत नहीं है. सिट, टॉक, एक्सप्लेन, बी लॉजिकल. आप बताएं कि देखें मैं, आप बड़ी हैं, बेशक आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस तरह से बड़े हों, एक सेट एनवायरनमेंट में टाइम टेबल के हिसाब से. मेरा बच्चा 8 बजे सोएगा, ठीक है, ताकि ये 3 से 4 घंटे की नींद ले, फिर इसके फीड का टाइम हो जाता है, ठीक है, या सुबह इसने स्कूल जाना है तो ये 8 बजे या 9 बजे ये सोएगा और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा.
3: एग्जैक्टली, गेट अ गुड 10 to 12 hours.
2: क्यों? ये बेशक आप दादी के पास सोए, बेशक दादी के पास, दादी वैसे भी मोहब्बत ज्यादा होती है, असल से सूद प्यारा होता है, तो दादियों को बड़ी मोहब्बत होती है अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों नवासों नवासियों से, तो यस, लेकिन आप एक रूटीन सेट करें, दैट्स योर राइट, ठीक है, एज अ मदर, प्लस आपको रिलीजियसली भी आप अलाउड है. नंबर 3, आपको कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखी है, अगर आपने अपनी बाउंड्रीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग थ्रू कम्युनिकेशन
3: सेट की
2: है.
1: तो अफशा, इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक पे बात करने को तो हम 2-3 घंटे भी बात कर सकते हैं.
2: अरे 2-3 एपिसोड भी बात कर सकते हैं.
1: तो द प्रॉब्लम इज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड सिंस वी हैव द लिमिटेड टाइम ऑफ 1 आवर टू कम्युनिकेट विद आर ऑडियंस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू some final thoughts on roles and responsibilities and our previous topic communication in our next episode, that is going to be the 4th episode on the Family Matters show. So before we close today's program, we want you to think about one person in your family, someone who quietly does a lot, someone whose work may not always be noticed, someone who remembers, organizes, cares, provides, supports. Perhaps today say thank you. Not because they need praise for every single thing, but because appreciation matters. And perhaps that one responsibility from them, not permanently necessarily, but enough to say you don't have to carry everything alone. Isn't it, Afsha?
2: बिल्कुल सही है. कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, वो अगले बंदे को, आपके स्पाउस को, एक बहुत बूस्ट दे देती हैं.
3: It's not even spouse, any of your family member.
2: Any member of, even कि आपके बच्चे. कभी कभी होता है ना शाबाश.

0: or something, mm-hmm. or keep give them duties,
1: mm-hmm.
0: give them responsibilities.
1: Mm-hmm.
0: कि आप वैक्यूम कर लो, डिशवॉशर खाली कर लो. मेरे घर में सबसे ज्यादा झगड़ा वैक्यूम पे होता है. तो मेरे घर में सबसे झगड़ा होता है इस पे वैक्यूम पे, कि कौन करेगा और डिशवॉशर पे. तो आई स्विच. अच्छा आज तुम वैक्यूम लगा लो, तुम डिशवॉशर कर लो, कल तुम डिशवॉशर कर लेना, ये वैक्यूम लगा देगा. तो इट वर्क्स. But they get the stars.
1: Every household stories. Yeah.
0: So, तो फिर वो stars होते हैं. End of the week they get something. If they want to have a takeout, usually that thing I do not allow. But on the weekend they are allowed once they have done their chores. तो वो कर लेते हैं.
1: उसके बाद they don't need stars anymore now.
0: They are grown ups.
1: Yeah.
0: But when they were young, they had these boards and they had these stars and everything, and it helped.
1: Yeah. It does because you know they want to be appreciated, because obviously at the end of the day they have done something for you. They have picked up their toys and put them in the basket, or they have cleaned their room, or they have, you know, sorted out their bed, which eventually is going to be
0: their
1: beneficial
0: habit
1: for them at the end of the day. But they have achieved something for
0: them. बिल्कुल. और फिर there's another thing. फिर होता क्या है कि वो एक दूसरे से ना ज्यादा स्टार लेने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, टू गेट अ बिगर सरप्राइज. टू अगर अच्छे आज के पूरे दिन की 5-6 लाइंस पे स्टार लगे हुए हैं, तो अच्छा एंड ऑफ द वीक मुझे जो है तो कोई बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा
1: जी. और दूसरा एक अदरवाइज भी होता है जिसपे वो केयर ही नहीं करते कि हम काम करें या ना करें. स्टार दूसरे को मिल रहे हैं, बेशक मिलते जाए, इट डजंट मैटर टू देम. सो वी हैव मोर टू टॉक अबाउट. एंड 0777948182 log on to inspirefm.org to see what's happening, all the previous episodes, all the current episodes, all the scheduled ones there. Until next time, stay kind, stay connected, share the work, share the care, and remember, a family is not built by one person's effort, it is built by everyone's contribution. So, thank you so much, and Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
5: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं. ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं. इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है. 12 सितंबर बरोज हफ्ता, दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक, एम्बरली गार्डन मार्की, गोर्स फार्म, हाई रोड, बेडफर्ड, MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे. हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए. मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk. अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. apply now for roles in frontline.